0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवरा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के किसान भाई बहनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने नवी नवी वातें ने हाती। तो आज भी किसान भाई बहन अमारी अब तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे जे किसान भाई बहन है ई बगीचा में स्वस्थ पौधों ने चुनाव हरते करे ने हरते एना ने अलग अलग प्रजातियाना जे पौधा है एना ने बगिया में लगाड़वा सुए। तो किसान भाई बहनों अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कनी वाते थेंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी वाते। तो किसान भाई बहन आप हमर तरह जो अपड़ू रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: किसान भाई बोनू गीत तो आए शुपुरु ने अण गीत बात एक वक्त फिरी आप सब नु घणेमान स्वागत कर हमारे आज के कार्यक्रम खेती वाड़ी में जिम की किसान भाई बोनू अमे आपने गीत तकी पहले विषय बता दीधु तू के आज आप बात करवा वाला हूं के आपड़े अपना बगीचा में स्वस्थ पौधों चुनाव हरते करा एने साथे अलग अलग प्रजातियों पौधों लगाड़ी ने अपने हरते अपनी जो आमदनी है एने वधावी शका। तो किसान भाई बोनू अण विषय माते जानकारी आलवा बल्ले आज अपने स्टूडियो में पधारे तो कहे श्रीमान पांचा भाई पटेल साहब। तो सब तक पहले अपने हामरी लड़ने की बात है मोरे करा अपनी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वाघ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसा कि आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बगीचों के लिए हम स्वस्थ पौधे का चुनाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम कोई बगीचा बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हमें पौधों का चुनाव करना आना चाहिए। बहुत सी बार हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो गलत पौधे का चुनाव कर लेते हैं तो वहाँ उन्हें वो फायदा नहीं मिल पाता है जो उन्हें असल में मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पौधों का चयन बगीचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: अब एक तो जो बगीचे के जो पौधे हैं चयन हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: अपनी जलवायु के हिसाब से देखना चाहिए ये पौधे अपने एरिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपन को देखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कौन से बाग अच्छी तैयारी होगी, मतलब कौन से पौधे अपने को बहुत अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। अब अपन यहाँ पर ये क्लाइमेट में सेब नहीं होता है और अपन सेब का पौधा चयन करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वातावरण अनुकूल पौधा आपको तैयार होना चाहिए, जैसे अनार है, आम है, पपीता है, करौंदा है, आंवला है, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, अमरूद है। इस प्रकार के पौधे का आप चयन कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: अब रही बात, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे तीन चार प्रकार का मिक्स पौधे की वाड़ी तैयार करनी है या वाटिका तैयार करनी है, तो आपको इस हिसाब से पौधे का देखना
0: चुनाव करना पड़ेगा।
1: चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन रही बात चयन की, तो उसकी जैसे कि आप आम के पौधे देखने जा रहे हैं है ना, नर्सरी के अंदर आप चयन करेंगे
0: जी जी।
1: तो पौधों की ग्रोथ देखनी पड़ती है, कम से कम पौधे की कलम कहाँ पर की है, कलम यदि नीचे की है, बीच में है कि बिल्कुल टोच पर है।
0: जी बिल्कुल।
1: आजकल नर्सरी वाले भी बहुत, जैसे देसी आम बहुत बड़ा हो गया 3-4 फीट का, लेकिन उसने कलम कर दी है बिल्कुल ऊपर आधे फीट पे
0: जी।
1: तो
0: हाँ।
1: वो ऐसे पौधे फेल होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमेशा वो अपन को देखना चाहिए, पौधों की साइज तो देखनी है लेकिन उसने कलम जो ग्राफ्ट किया है, कलम की है वो कहाँ पर की है।
0: जी बिल्कुल।
1: यदि नीचे ग्राफ्टिंग है और पौधा 2-3 फीट का हाइट का है तो वो बेस्ट पौधा है।
0: जी हाँ।
1: पौधा में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पौधा स्वस्थ होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बीमारी अपने खेतों में, अपने फलदार जो बगीचा है उसमें नहीं आए। तो ये सब चीजें, जैसे पौधे की आम की बात कर ली, इस हिसाब से जैसे अपन अमरूद के पौधे का चयन करते हैं तो अमरूद के पौधे का ग्राफ्टिंग हो सकता है उसने विनियर ग्राफ्टिंग की, मतलब मैंने आपको पहले बताया गूंटी कलम, जिसके अंदर जड़ों के अंदर ही वो पौधा दिखता है, मतलब उसकी कलम दिखती नहीं है।
0: जी जी।
1: तो ये बहुत विश्वास पात्र पौधे नर्सरी से लेना चाहिए कि जिसकी कलम नहीं दिखती है तो वो सही किस्म का पौधा है कि नहीं है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: तो वो पौधा की आपको हाइट देख के, क्योंकि अमरूद का पौधा हमेशा उसकी फास्ट ग्रोथ होती है ना, तो एक तो उसके मतलब बिना रोग वाला रोगहीन पौधा आपको चयन करना है, जिसके अंदर पौधे के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हर प्रकार का पौधा, जो लींबू वर्ग का पौधा अपन देखें तो भी आपको इस प्रकार से आपको बारहमासी जो पौधा है वो आपको देखना चाहिए है ना, तभी आपका जो फलदार पौधा है, फलदार वाड़ी है वो आप सफल कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन ये सब चीज जो अलग अलग पौधे जो अपन देखते हैं, कोई पौधा कोई लगे एक या दो प्रकार के पौधे लगाते हैं
0: जी हाँ।
1: वो घर के लिए काफी अच्छा है, जैसे नारियल का पौधा लगा दिया है ना, लेकिन यदि आप आमदनी की दृष्टि से देखेंगे तो आपको ज्यादा मात्रा में पौधे
0: लगाने
1: होंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई अपन को संतरा करना है ना, या फिर अपन को करौंदा करना है
0: जी हाँ।
1: करौंदा अचार के लिए बहुत उपयोगी है, तो करौंदा खेत के बीच में करने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: करौंदा आपको बाढ़ के सहारे सहारे सहारे यदि करौंदा कर दिया तो आपको दो प्रकार का बेनिफिट हो जाएगा
0: जी हाँ।
1: किसान को के भी बीच में भी फलदार पौधे ले सकते हैं और जो बाउंड्री है उसके अंदर जो करौंदे के पौधे लगा दिए तो वहां से भी आप, और क्योंकि वो झाड़ीदार और कांटेदार रहता है
0: जी जी,
1: तो एक तो प्रकार की फेंसिंग भी हो जाएगी और करोंदे के फल भी उसको
0: मिल जाएंगे जी बिल्कुल सर।
1: अब जो अपन खेत के बीच में अपन फलदार पौधे लगाते हैं, लेकिन खेत की बाउंड्री ऊपर यदि पौधे नहीं लगाए, जो पौधे गर्मी ठंडी और हवा से सुरक्षा देते हैं, जैसे बड़े पौधे वानिकी पौधे की अपन बात करते हैं
0: जी बिल्कुल सर,
1: जो वाड़ी के अंदर पौधे लगाए उससे हाइट में बड़े होने चाहिए, जैसे अपन सागवान की बात करते हैं, जैसे अपन जो नीम है, सुबबूल है ना, शीशम है, कचनार है, सिरस है, इस प्रकार के पौधे चारों तरफ बाउंड्री पे लगना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जब आपको 4-5 साल के बाद आपके खेत के अंदर फल आएगा, और एक तरफ जैसे अभी क्लाइमेट चेंज अपन देख रहे हैं कि भी गर्मी के अंदर इतना तूफान आया कि काफी किसानों को आम का नुकसान हो गया, काफी कैरियर नीचे गिर गई। यदि आपके खेत के चारों तरफ इस प्रकार के पौधे हैं बड़े बड़े, तो वो हवा को रोकने का काम करेगा
0: जी हाँ।
1: और जो आपका फल लगा हुआ है वो गिरेगा नहीं
0: जी,
1: हवा उसको टकरा के ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसान भाई जब कोई फलदार पौधे की वाड़ी तैयार करता है तो चारों तरफ बाउंड्री में भी उसको दूसरे पौधे
0: लगाने,
1: वो पौधे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो उनको पशुओं को चारे के रूप में काम हो सकता है, इमारती लकड़ी के रूप में काम हो सकता है, तो जैसे जामुन है, जामुन का पौधा भी चारों तरफ लग सकता है, तो इस प्रकार का टिमरू है, जामुन है, इस प्रकार का पौधा यदि लगाएंगे तो उसका फल भी खाने में आ जाएगा, उस फल से कुछ आमदनी भी मिल सकती है, और ये जो मैंने बताया हवा और गर्मी के लू से जो पौधे का नुकसान होता है उससे भी बचा जा सकता है
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से बगीचों में वो स्वस्थ पौधे का चुनाव करें, और किस तरीके से वो अगर पौधा खरीदने जा रहे हैं तो उन्हें बातों का ध्यान रखना है। यही सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वस्थ पौधों के जो चुनाव हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं उनसे उन्हें क्या लाभ होंगे, और साथ ही उनकी कौन कौन सी किस्में हैं।
1: बिल्कुल, स्वस्थ पौधे से किसान को बहुत बड़ा लाभ है। एक उसकी ग्रोथ
0: जी जी
1: ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी तो जल्दी उत्पादन आएगा
0: जी हाँ,
1: किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, तो आमदनी ज्यादा आने के लिए स्वस्थ पौधा चयन करना बहुत जरूरी है
0: जी हाँ।
1: तो किसान की खर्च बच जाएगा, किसी भी प्रकार का कीटनाशक की छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, और स्वस्थ पौधा जो होगा वो जैसे कि बताया कि ग्रोथ ज्यादा होगी तो उत्पादन भी उसमें ज्यादा होता है स्वाभाविक है, तो स्वस्थ पौधा किसान के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन हाँ, उसमें कौन कौन सी किस्म है, उत्पादन कुछ किस्मों के आधार पर भी जाता है
0: जी बिल्कुल।
1: तो किस्म की अपन बात करें तो जैसे अपन आंवला की बात करें, आंवला भी काफी अच्छा फलदार पौधा है
0: जी जी,
1: है ना, तो उसके अंदर भी NA7, आनंद वन, कृष्णा, कंचन, इस प्रकार की वेराइटी आंवले के अंदर आती है। जैसे अमरुद जो है, अमरुद के लखनऊ 49 है
0: जी जी,
1: इसके बाद इलाहाबादी है, सफेदा है ना, तो ये उत्पादन के लिए काफी अच्छा
0: फायदेमंद,
1: मतलब बहुत बड़ा फल रहता है उसके अंदर, तो ये वेराइटी अच्छी है। लींबू के अंदर देखें अपन, बारहमासी जो लींबू है, कागदी लींबू है, पंत लाइम है, विक्रम है, परमलीन है, इस प्रकार की लींबू में भी अलग अलग प्रकार की वेराइटी है
0: जी बिल्कुल,
1: जो आप खास करके बारहमासी लींबू आप घर में उपयोग कर सकते हैं, बाड़ी में उपयोग कर सकते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: बेर की बात करें, आजकल बेर भी बहुत अच्छा आमदनी देता है, तो गोला, सेब, उमरान, मुड़िया, ये प्रकार की वेराइटी भी बेर में भी है
0: जी हाँ।
1: अनार भी यदि अपन देखें, अनार के लिए भी ये यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, तो एक तो सिंदूरी अनार अच्छा है, मृदुला है, गणेश है, तो ये वेराइटी अनार में भी है। आम की बात करें तो आम के अंदर यहाँ की जलवायु अपन देखें तो आम जो केसर आम अच्छा है वेराइटी में, लंगड़ा है, मलिका है, दशहरी है, ये वेराइटी अपने इस इलाके में काफी
0: ज्यादा प्रचलित है
1: और उसका क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर काफी उसकी ग्रोथ अच्छी है
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये अलग अलग जो फलदार पौधे हैं इसकी अलग अलग किस्म है, और उसके आधार पर किसान वो किस्म का पौधा लाके अपने खेत के अंदर लगा सकता है और अच्छी आमदनी कर सकता है
0: जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर आज आपने कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी बात से अवगत कराया है, कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन है वो बगीचों के लिए पौधों का चुनाव करें, क्या ऐसी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को आपका अमूल्य कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जेम की किसान भाई बहनों, अवड़े अपने वैस में पटेल सर जुड़े तक हता ने एने आपड़ा ने घनी अचल तरीका तक बता दीदू है कि हर ते आपड़े स्वस्थ पौधा नो चुनाव करी शका ने अलग अलग प्रजाति ना पौधा ने लगाड़ी ने आपड़ी जे आजीविका है एने वधावी शका। तो आशा कर रहा हूं कि किसान भाई बहनों आ सब बातें आपने गमी होंगा ने अभी टाइम भी थी गयो है आपड़े अणस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो। तो आपड़ा सूटता पड़ा पर साथे पहले हामरी लायक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

किसान भाई बुनो अणस की थाते हमें कार्यक्रम खेतीवाड़ी तिगी पड़ा सूटा आशा कर रहा कि आज के कार्यक्रम में हमारी अब तक की जी भी बातें रही हैं या आपने गमी होगा। तो किसान भाई बहन आपने अमारो आज नो कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव अमेरने आली सको अमेर अणपता मत अमरु पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वाघ रेडियो 90.8 एफएम काम पोस्ट कोपड़ा वाघथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमरु फोन नंबर है 9460051234। किसान भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक ना विषय ने हाते तारू दी राम राम राम राम।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थई सके।
5: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
5: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
5: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
6: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
6: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन के साथ में एक नए विषय को लेकर। आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखाएं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बचपन जीवन का वह दौर है जहां आदतें संस्कार और व्यवहार की नींव रखी जाती है। इसी समय जो गुण सिखाए जाते हैं वे जीवन भर व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज के तेज और तुरंत परिणाम चाहने वाले युग में कशिश, बच्चों के लिए धैर्य रखना और अपनी बारी का इंतजार करना एक महत्वपूर्ण कौशल बन गया है। तो जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: जी हाँ,

0: इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि विषय से रूबरू आपको गीत से पहले करा ही चुके हैं साथियों, कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना हम कैसे सिखाएं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे किसी भी चीज के लिए तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं, चाहे वह खेल में अपनी बारी हो या खाने की चीज हो। हम देखते हैं कि ऐसे में उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना सिखाना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन कौशल है जो उन्हें अनुशासन, सहनशीलता और सामाजिक व्यवहार सिखाता है।
1: बिल्कुल
0: अगर बात करें कि अपनी बारी का इंतजार करने का क्या महत्व होता है, तो श्रोता साथियों, अपनी बारी का इंतजार करना बच्चों को कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है।
1: जी जी।
0: जैसे कि धैर्य का विकास। हम देखते हैं अंजलि जी कि जब बच्चा इंतजार करना सीखता है तो वह यह समझ जाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती।
1: बिल्कुल।
0: और यह उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। साथ ही अगर बात करें तो खेल हो या पढ़ाई, हर जगह नियम होते हैं साथियों। ऐसे में अपनी बारी का इंतजार करना बच्चों को नियमों का सम्मान करना भी सिखाता है अंजलि जी।
2: जी हाँ, यही बात करे कशिश, तो जब बच्चा दूसरों को भी बराबरी का अधिकार देता है तो उसमें सहानुभूति और सम्मान की भावना विकसित होती है। स्कूल, परिवार और समाज में बच्चों को दूसरों के साथ मिलकर रहना होता है।
0: बिल्कुल।
2: इंतजार करना उन्हें बेहतर सामाजिक बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी बारी का इंतजार करने का महत्व इन सारी चीजों में छुपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
2: यही अब बात करें कि बच्चों में अधैर्य के क्या कारण होते हैं, तो साथियों, तुरंत संतुष्टि की आदत, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के कारण बच्चों को सब कुछ तुरंत मिल जाता है, इस वजह से वे अधैर्य हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अत्यधिक लाड प्यार, यानी कि जब हर मांग तुरंत पूरी कर दी जाती है तो बच्चा इंतजार करना सीख ही नहीं पाता है।
0: बिल्कुल।
2: ऐसे में माता पिता को चाहिए कि बच्चों की हर इच्छा को तुरंत पूरी ना करें। उनकी जो इच्छा है वो पूरी करने लायक है या नहीं है, इन सारी चीजों पर ध्यान से बात करें, बच्चों को समझाएं। अगर चीज उनके लायक नहीं है तो हमें बच्चों को नहीं देनी है। इससे बच्चा जो है वो धैर्य की चीजों को सीख पाता है।
0: बिल्कुल।
2: इसी के साथ हम देखते हैं कि उदाहरण की कमी। यदि कशिश माता पिता स्वयं अधैर्य दिखाते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। इसलिए सबसे पहले धैर्य का गुण जो है वो माता पिता के अंदर भी होना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर इसी के आगे बात करें कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखाया जाए, तो देखते हैं कि खुद उदाहरण बनना हमें सीखना होगा।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि बच्चे अंजलि जी वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। ऐसे में यदि माता पिता खुद धैर्य रखेंगे और लाइन में खड़े रहते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। साथी श्रोता साथियों, आप छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करवा सकते हैं, जैसे कि खेल में बारी बारी से खेलने को आप बच्चों को कहें, खाने की मेज पर सभी के बैठने का इंतजार करवाएं।
1: बिल्कुल।
0: कहानी सुनाते समय बीच में बोलने या फिर टोकने से आप अपने बच्चों को रोकें। इससे अंजलि जी धीरे धीरे बच्चा यह समझने लगता है कि हर चीज का एक नियत समय होता है और वो चीज उसी समय पर होनी जरूरी होती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ अगर बात करें खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि पास द बॉल, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे कुछ खेल होते हैं जो बच्चों को काफी पसंद होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो माता पिता जो हैं वो इन खेलों का सहारा ले सकते हैं अपनी बारी के महत्व के बारे में बच्चों को बताने में। दोस्तों, इन खेलों में बच्चे स्वाभाविक रूप से इंतजार करना सीखते हैं।
2: इसी के साथ कशिश बात आती है स्पष्ट नियम बनाएं। यानी कि दोस्तों, बच्चों को साफ साफ बताएं कि पहले तुम्हारी बहन की बारी है, फिर तुम्हारी आएगी।
0: जी हाँ।
2: नियम जितने स्पष्ट होंगे बच्चे उतना जल्दी उन सारी चीजों को सीख पाएंगे। जब बच्चा कशिश अपनी बारी का इंतजार करता है तो उसकी तारीफ हमें करनी है कि तुमने बहुत अच्छे से इंतजार किया, मुझे तुम पर गर्व है। इससे बच्चा प्रेरित होता है और वही व्यवहार दोहराता रहता है। कहानियों के माध्यम से भी श्रोता साथियों, हम बच्चों को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं।
0: जी हाँ।
2: क्योंकि कहानियाँ बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। धैर्य और संयम की कहानी सुनाएं, इन सारी चीजों से बच्चे सीख पाएंगे कि धैर्य का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल।
2: बच्चों को बताएं कि 5 मिनट बाद तुम्हारी बारी आएगी, इससे वे मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और कम बेचैन होते हैं। कह सकते हैं कशिश के कभी कभी इंतजार करते समय बच्चे गुस्सा करते हैं, ऐसे में उन्हें गहरी लंबी सांस लेना सिखाएं, गिनती करना और ध्यान हटाना भी सिखाएं।
0: बिल्कुल।
2: ताकि बच्चे जो हैं वो अपने जीवन में अपनी बारी का इंतजार करना सीखें, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है उनकी जिंदगी का।
0: जी हाँ अंजलि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हमारी आगे भी श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोताओं को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
2: बिल्कुल। तो आइए साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि हम अपने बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: यही बात करें कशिश की, आम गलतियां जो अक्सर हम माता पिता कर देते हैं वो है हर बार तुरंत मांग को पूरी करना।
1: जी हाँ।
0: साथियों, यकीन मानिए इससे आपका बच्चा अधैर्य हो जाता है। डांटना या सजा देना, इससे बच्चा डर सकता है लेकिन सीख नहीं पाता। तुलना करना कि देखो वह बच्चा कितना शांत है, ऐसी बातें बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी है। इसी के साथ शिक्षक और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रोता साथियों, स्कूल में सामूहिक गतिविधियां हमें करानी चाहिए जिससे बच्चे जो है वो इंतजार करना सीखते हैं। खेल प्रतियोगिता, मंच कार्यक्रम अनुशासन को बढ़ाते हैं और समाज में लाइन लगाना और नियमों का पालन करना बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देता है।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं कशिश के आधुनिक समय में कई सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे कि आज के डिजिटल युग में बच्चों के लिए इंतजार करना और भी कठिन हो गया है। ऑनलाइन गेम, वीडियो गेम और फास्ट लाइफस्टाइल ने बच्चों को तुरंत परिणाम का आदि बना दिया है। इससे माता पिता को और अधिक सजग होकर बच्चों में धीर और संयम का विकास करना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना सिखाना केवल एक छोटी सी आदत नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये उन्हें जीवन में सफलता पाने, अच्छे रिश्ते बनाने, साथ ही जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। साथियों, हम देखते हैं कि धैर्य, अनुशासन और सम्मान जैसे जो गुण होते हैं वे बच्चों में तभी विकसित होते हैं जब बच्चा ये समझता है कि हर चीज का, हम कह सकते हैं कि एक समय होता है, हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। इसलिए हमें बच्चों को प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन के साथ ये सिखाना चाहिए अंजलि जी कि इंतजार करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है।
0: बिल्कुल।
1: हम कहते हैं कि जब बच्चा ये सीख जाता है तो वह न केवल एक अच्छा छात्र बनता है बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हमारे लिए यह समझाना बच्चों को और भी जरूरी हो जाता है कि बच्चे अपनी बारी का इंतजार करना सीखें, क्योंकि ये केवल एक व्यवहारिक आदत नहीं है बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास की नींव है। जब बच्चा धीरे रखना सीखता है तो वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और समझदारी से निर्णय लेना भी सीख जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इंतजार करने की आदत बच्चों को यह सिखाती है साथियों कि हर चीज का एक सही समय होता है और हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है। इससे उनके अंदर सम्मान, अनुशासन, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये गुण कशिश उन्हें न केवल एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं बल्कि भविष्य में एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाते हैं। माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चे को डांट फटकार से नहीं बल्कि प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन से यह आदत सिखाएं। छोटे छोटे अभ्यास, अच्छे उदाहरण और सकारात्मक प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे इस गुण को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही अगर बात करें तो देखते हैं कि आज के तेज और तुरंत परिणाम देने वाले युग में यह और भी जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को धैर्य का महत्व समझाएं साथियों।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जो बच्चा इंतजार करना सीख जाता है वही जीवन में बड़ी सफलता और संतुलन हासिल कर पाता है। ऐसे में आप हमेशा ये याद रखिए कि अपनी बारी का इंतजार करना एक साधारण आदत लग सकती है लेकिन ये एक मजबूत और सफल जीवन की पहली सीढ़ी है साथियों।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल।
0: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी।
2: चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाकर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज तकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है बिजली के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आधुनिक युग को यदि बिजली का युग कहा जाए तो ये बिल्कुल उचित होगा। आज हम मनुष्यों का जीवन बिजली के बिना अधूरा दिखाई देता है कशिश।
0: जी जी,
1: घर हो, विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, उद्योग, कृषि हो, परिवहन हो, संचार हो, मनोरंजन, हर क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा भूमिका है। बिजली ने हमारे मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और तेज बना दिया है। जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त आवश्यक होता है श्रोता साथियों, उसी प्रकार आधुनिक समाज के लिए बिजली भी उतनी ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बिजली केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि विकास और प्रगति की आधारशिला भी बन चुकी है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो यहाँ पर पहले सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कह सकते हैं कि उसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना लगभग असंभव है। जागृति
1: जी हाँ,
0: बातचीत का विषय है बिजली का महत्व। हम देखते हैं कि सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम बिजली का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: घर की रोशनी, पंखा, कूलर, मोबाइल, चार्जर, इंटरनेट, अस्पताल, कारखाने और कह सकते हैं कि साथ ही साथ संचार व्यवस्था, सब कुछ बिजली पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि बिजली की खोज और उसके उपयोग ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी है। वैज्ञानिकों के अनेक प्रयोगों और खोजों के कारण आज हम बिजली का लाभ उठा रहे हैं। पहले लोग दीपक, लालटेन और मशालों का उपयोग करते थे, लेकिन बिजली के आने से रोशनी की दुनिया बदल गई। धीरे धीरे बिजली का उपयोग केवल प्रकाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मशीनों, उपकरणों और तकनीकी विकास का आधार बन गया।
0: बिल्कुल,
1: आज बिजली उत्पादन के लिए जल, कोयला, गैस, परमाणु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारे विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। इससे मानव जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि विज्ञान की

0: मजबूत देन बिजली से बड़ी जीवन की शान।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बिजली केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि आज के समय में यह विकास, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति की आधारशिला बन चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, विज्ञान और तकनीक के इस युग में बिजली ने मानव जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। इसलिए बिजली के महत्व को समझना और उसका सही उपयोग करना प्रत्येक नागरिक के साथ साथ युवाओं की भी जिम्मेदारी है जागृति जी।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि बिजली ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। साथियों, यह वह शक्ति है जो विभिन्न उपकरणों और मशीनों को चलाने का कार्य करती है। बिजली के अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे कि जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जागृति जी, आज दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में बिजली का उपयोग हो रहा है और इसकी जो मांग है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि यदि अचानक बिजली चली जाए तो हमें उसकी वास्तविक आवश्यकता का अनुभव होता है। गर्मी में पंखे बंद हो जाते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता, पानी की मोटर रुक जाती है और कई आवश्यक कार्य बाधित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इससे स्पष्ट है कि बिजली हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। आज हम देखते हैं कशिश की हमारे दैनिक जीवन की लगभग हर गतिविधि बिजली पर निर्भर करती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनेक विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, शिक्षा के क्षेत्र में बिजली ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज हम देखते हैं कि विद्यालय महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं हो गई है, कंप्यूटर हो गए हैं, लैब हो गए हैं, प्रोजेक्टर और इंटरनेट आधारित शिक्षण संभव हुआ है। हमारे जितने विद्यार्थी वो ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और डिजिटल संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं श्रोता साथियों, और हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली की उपलब्धता से बच्चों को रात में पढ़ने की सुविधा मिली है।
1: जी हाँ।
0: बिजली के कारण शिक्षा और अधिक प्रभावी और सुलभ भी बनी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि पहले लोग जहां दीपक, लालटेन और मोमबत्ती का उपयोग करते थे उनकी रोशनी सीमित होती थी, लेकिन आज बिजली के बल्ब, एलईडी लाइटों ने रातों को भी दिन जैसा उजाला संभव बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: इससे जागृति जी, लोगों की कार्य क्षमता तो बढ़ी है, साथ ही जीवन भी बहुत ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिजली का महत्व बहुत अधिक है, जिससे कि युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बिजली का महत्व दोस्तों इसलिए अधिक माना जाता है क्योंकि पढ़ाई में ये सहायता करता है।
0: जी हाँ।
1: जिससे कि रात में अच्छी रोशनी में अध्ययन संभव हो पाता है युवाओं के लिए। कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं बिजली और इंटरनेट पर ही निर्भर रहती है।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं जागृति जी कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गए हैं, वह इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम कृषि में बिजली का क्या महत्व है उसको लेकर बातचीत करें तो श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है।
1: जी।
0: और खेती के विकास में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेतों की सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कृषि मशीनें, अनाज प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज भी बिजली पर निर्भर है।
1: बिल्कुल।
0: बिजली ने किसानों का श्रम कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है।
1: जी हाँ।
0: जहां पहले सिंचाई के लिए अधिक समय और मेहनत लगती थी, वहीं अब बिजली के माध्यम से ये कार्य सरल हो गया है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से बिजली के महत्व को लेकर बात कर रहे हैं और किस प्रकार से बिजली की उपयोगिता अलग अलग क्षेत्रों में महत्व रखती है ये हम जान रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें ये आगे और भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: खुदा। साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी बिजली के महत्व को लेकर। तो श्रोता साथियों, यही हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज का युग सूचना और संचार का युग है। आप सभी भी जानते हैं, हम देखते हैं कशिश की मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और टेलीविजन बिजली के बिना काम नहीं कर सकते। बिजली ने दुनिया को एक छोटे से वैश्विक गांव में बदल दिया है। लोग कुछ ही क्षणों में देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाएं बिजली की उपलब्धता के कारण ही संभव हो पाई है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कशिश के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचने से विकास की गति तेज हुई है। बिजली के कारण गांव में छोटे उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है तथा लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ रहा है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी बिजली की जीवनदायिनी भूमिका रही है। जैसे कि बिजली के बिना ऑपरेशन थिएटर नहीं चल सकते थे, एक्सरे और जो भी मशीनें थी वे कार्य नहीं कर पाती थी। साथ ही जीवन रक्षक उपकरण भी श्रोता साथियों बंद हो सकते थे। लेकिन हम देखें तो आज बिजली ने सब कुछ आसान कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और संचार के सभी आधुनिक साधन बिजली पर ही आधारित हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में युवाओं के लिए फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन रोजगार, सोशल मीडिया जैसी सुविधाएं बिजली की वजह से ही संभव हो पाई है। अगर बात करें ग्राम विकास की, तो जब किसी गांव में बिजली पहुंचती है तो वहां विकास की एक नई संभावनाएं जन्म लेती हैं।
0: बिल्कुल कशिश,
1: ऐसे में बिजली आने से जागृति जी बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई है, छोटे उद्योग स्थापित हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधरी हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही युवाओं के लिए जैसा कि हमने बताया कि रोजगार के भी ढेर सारे अवसर खुले हैं।
0: जी हाँ,
1: इस प्रकार जागृति जी ऐसा कहा जा सकता है कि बिजली गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि बिजली जितनी महत्वपूर्ण है उसकी बचत भी उतनी ही जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आवश्यकताओं के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
1: जी
0: श्रोताओं, यदि हम बिजली का दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। हमें अनावश्यक रूप से जलती लाइटें और पंखे बंद करने होंगे, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना होगा और बिजली बचाने की आदत विकसित करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: छोटी से छोटी सावधानियां बड़ी बचत का कारण बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कशिश कि आज पूरी दुनिया स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रही है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन के ऐसे साधन हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।
1: बिल्कुल,
0: भारत भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यदि हम नवीनीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकेंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पैमाना उसकी विद्युत व्यवस्था होती है।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ जागृति जी पर्याप्त बिजली होती है वहाँ उद्योग विकसित होते हैं, शिक्षा बेहतर होती है और रोजगार भी बढ़ता है। इसलिए श्रोता साथियों, बिजली केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक शक्ति भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि बिजली आधुनिक जीवन की धड़कन है। ये हमारे घरों को रोशन करती है, शिक्षा को आगे बढ़ाती है, उद्योगों को गति देती है और किसानों की भी सहायता करती है। हम देख सकते हैं कि देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में आज हम जिस सुविधाजनक जीवन का आनंद ले रहे हैं उसमें बिजली का अमूल्य योगदान है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि बिजली आधुनिक जीवन की रीढ़ है। ये केवल रोशनी का साधन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, संचार और विकास की शक्ति है। श्रोताओं, बिजली ने मानव जीवन को नई गति, नई दिशा प्रदान की है। आज का समाज बिजली के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल,
0: हमें बिजली के महत्व को समझते हुए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा श्रोता साथियों, और इसकी बचत को अपनी आदत बनाना होगा। साथ ही नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाकर भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: जब हर घर, हर गांव और हर क्षेत्र तक बिजली का लाभ पहुंचेगा, तभी सच्चे अर्थों में देश का समग्र विकास संभव हो पाएगा।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि बिजली एक अमूल्य संसाधन है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण हमारी ही जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम आज बिजली बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा का सुरक्षित भविष्य हम सुनिश्चित कर पाएंगे जागृति जी। ऐसे में युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, बिजली केवल तारों में बहने वाली ऊर्जा नहीं है बल्कि विकास, ज्ञान, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की शक्ति है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हम सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम बिजली का सदुपयोग करेंगे, उसकी बर्बादी को रोकेंगे और ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि साथियों, जब बिजली बचेगी तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों बिजली केवल तारों में बहने वाली ऊर्जा नहीं है, बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और समृद्धि की रोशनी है। जिस घर में बिजली का उजाला होता है वहाँ सपनों को पंख मिलते हैं। इसलिए बिजली का सम्मान करें, इसकी बचत करें और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का संकल्प लें। याद रखिए, बिजली की हर बची हुई इकाई भविष्य की सबसे बड़ी कमाई है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हुई, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना अंतिम गीत हमारे साथियों को हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है, और जहाँ स्वास्थ्य होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जहाँ जागृति जी आत्मविश्वास और जिम्मेदारियाँ होती है वहीं सच्चे स्वराज का जन्म होता है। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों से बातचीत करने वाले हैं। हमारे बातचीत का विषय है स्वच्छता से स्वराज तक का सफर को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे स्वच्छता के बारे में। लेकिन क्यों न जागृति जी, कार्यक्रम की शुरुआत में पहले गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि जागृति जी गीत से पहले विषय से अवगत कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है स्वच्छता से स्वराज तक के सफर को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, स्वच्छता और स्वराज ये दोनों शब्द देखने में भले ही अलग अलग लगते हो, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है।
1: जी हाँ,
0: स्वच्छता केवल जागृति जी अपने घर, आंगन, सड़क या गांव को साफ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी का भी परिचय देती है।
1: बिल्कुल,
0: वहीं स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझने, जिम्मेदारी को निभाने और समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाने की जो चीजें हैं उनको लेकर जागरूक होने की जरूरत है। असली स्वच्छता से स्वराज तक का सफर केवल सफाई का अभियान नहीं, बल्कि जागरूकता, अनुशासन और सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता को स्वतंत्रता जितना ही महत्वपूर्ण माना था। उनका मानना था कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले लोगों की सोच और आदतों में परिवर्तन लाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी स्वयं सफाई कार्यों में भाग लेते थे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते थे। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था श्रोताओं, बल्कि ऐसा समाज बनाना था जहां लोग आत्मनिर्भर, अनुशासित और जिम्मेदार हो।
0: बिल्कुल,
1: आज भी गांधी जी के विचार हमें ये सिखाते हैं कि स्वच्छता और स्वराज एक दूसरे के पूरक है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हमारे देश ने भले ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन सही अर्थों में स्वराज तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और हर समस्या के लिए केवल सरकार को दोष देते हैं, तो जागृति जी यह स्वराज की भावना के विपरीत है। स्वराज का पहला कदम यही है कि हम स्वयं जिम्मेदारी उठाना सीखें। जब व्यक्ति अपने घर की सफाई करता है, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, तब वह सच्चे स्वराज की दिशा में कदम बढ़ाता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्वच्छता का संबंध केवल बाहरी वातावरण से नहीं है, आंतरिक सोच से भी है। जिस प्रकार हम अपने घर और आसपास की गंदगी साफ करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन से नकारात्मकता, ईर्ष्या, भेदभाव और स्वार्थ की गंदगी को भी दूर करना है। श्रोताओं, स्वच्छ विचार ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। जब लोगों की सोच सकारात्मक होती है अंजलि, तभी मिलजुल कर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं, और यही सच्चे स्वराज की पहचान है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा भारत देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट शहर, आधुनिक तकनीक, नई योजनाएं और आर्थिक प्रगति, ये सब हमारे विकास के प्रतीक है। लेकिन श्रोताओं, यदि स्वच्छता की भावना कमजोर होगी तो विकास अधूरा रह जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी देश की पहचान अंजलि केवल उसकी ऊंची इमारतों से नहीं है, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आदतों और अनुशासन से होती है। जब लोग सार्वजनिक स्थानों को अपना समझकर उनकी देखभाल करते हैं, तब राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां लोग अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जहां हर कोई बदलाव तो चाहता है, लेकिन खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम स्वराज और स्वच्छता को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो स्वच्छता से स्वराज का सफर युवाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा स्वच्छता को अपनी आदत बना ले अंजलि, पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए, प्लास्टिक का कम उपयोग करे, जल संरक्षण करे और समाज में जागरूकता फैलाए, तो देश में सकारात्मक परिवर्तन की नई लहर पैदा हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की ताकत भी है। उनकी जागरूकता और जिम्मेदारी स्वराज की नींव को मजबूत बना सकती है अंजलि।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अब भी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें चल रही थी स्वच्छता से स्वराज तक के सफर को लेकर, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं हम आपको यही कहना चाहेंगे कि गांव में स्वच्छता का भी बहुत महत्व है। स्वच्छता और स्वराज दोनों का आधार सहभागिता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तब बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है। अंजलि, समाज में सकारात्मक बदलाव केवल कानूनों से नहीं आते श्रोताओं, बल्कि लोगों की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से आते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले ले अंजलि कि वो अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा, तो देश में स्वच्छता की संस्कृति विकसित होगी। यही संस्कृति आगे चलकर जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करेंगी और जिम्मेदार नागरिक ही स्वराज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम इस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी सी कहानी हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे, जो हमें बताती है कि स्वच्छता से शुरू हुआ एक छोटा सा कदम कैसे स्वराज की बड़ी मंजिल तक पहुँच सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि एक सुंदर सा गांव था, चारों ओर खेत, पेड़ पौधे और मेहनती लोग थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि गांव में हर जगह कचरा फैला रहता था, नालियां गंदी थी, तालाब में प्लास्टिक भरा रहता था।
0: बिल्कुल।
1: और लोग अक्सर जागृति जी कहते थे कि सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन जब कोई उन्हें पूछता कि गांव को साफ रखने के लिए आपने क्या किया, तो सभी चुप हो जाते थे। एक दिन गांव के विद्यालय में नए सर आए, उनका नाम था अरुण सर। उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। एक दिन सर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ स्वराज का मतलब क्या है। तो उन सारे बच्चों में से एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका नाम था रवि। रवि बोला, सर स्वराज अंग्रेजों से मिली आजादी है। तभी एक लड़की जिसका नाम था सीमा, सीमा ने कहा, सर स्वराज का मतलब अपना शासन। तभी सर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या केवल आजादी मिल जाना ही स्वराज है? अगर हम अपने गांव, अपने वातावरण और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान न रखें, तो क्या हम सच में आजाद हैं? श्रोता साथियों, बच्चे एकदम से सोच में पड़ गए।
0: बिल्कुल।
1: फिर अगले दिन रविवार आया, अरुण सर

0: रविवार के दिन विद्यालय पहुंच गए। उनके हाथ में झाड़ू था। कुछ बच्चे भी विद्यालय आए थे। बच्चों ने पूछा, सर आज सफाई करने वाले नहीं आए हैं क्या? तभी सर ने कहा, आज मैं कर्मचारी नहीं हूँ, जिम्मेदार नागरिक बनकर आया हूँ।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, उसके बाद सर की बात सुनकर बच्चे भी उनके साथ जुट गए। सभी ने विद्यालय परिसर की सफाई शुरू कर दी और ये देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे इससे क्या बदल जाएगा? तभी सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह जागृति जी, कुछ दिनों बाद बच्चों ने अपने घर में भी साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया। वे अपने माता पिता से भी कहने लगे कि कचरा सड़क पर नहीं डस्टबिन में डालिए, तालाब में प्लास्टिक मत फेंकिए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी।
1: जी हाँ,
0: अब गांव के लोग समझने लगे कि स्वच्छता केवल दिखावे की चीज नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा विषय है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा भी गया है श्रोता साथियों कि स्वच्छ गांव की यही पुकार स्वस्थ जीवन का आधार है। कुछ महीनों बाद गांव पहले से बहुत साफ दिखाई देने लगा। जागृति जी, अब गांव में बाहर से आने वाले लोग भी तारीफ करने लगे थे। एक दिन पंचायत की बैठक हुई और सरपंच साहब बोले कि जब हम अपना गांव साफ रख सकते हैं तो क्या हम दूसरी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते? तो श्रोता साथियों, सभी ने एक स्वर में कहा, क्यों नहीं। यहीं से गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ।
1: बिल्कुल,
0: लोगों ने महसूस किया श्रोता साथियों कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि स्वराज का मतलब शासन चलाना नहीं, स्वराज का अर्थ है अपने जीवन और समाज की जिम्मेदारियों को खुद उठाना।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तो हम कह सकते हैं कि जब लोग जिम्मेदार बनते हैं तब लोकतंत्र मजबूत होता है। स्वच्छता हमें अनुशासन सिखाती है और अनुशासन हमें जिम्मेदारी सिखाता है और जिम्मेदारी हमें स्वराज की ओर ले जाता है। इसी प्रकार श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कह सकते हैं कि स्वच्छता से स्वराज तक का सफर केवल रास्तों और भवनों की सफाई का नहीं बल्कि विचारों, आदतों और जिम्मेदारियों के विकास का सफर है।
0: बिल्कुल,
1: ये यात्रा हमें बताती है अंजलि कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जब व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है।
0: जी जी,
1: इसीलिए स्वच्छता को केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन का संस्कार बनाना होगा। तो श्रोता साथियों, हमें ये ठान लेना है कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, क्योंकि सच्चा स्वराज किसी सरकार की देन नहीं अंजलि बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों के प्रयासों से निर्मित होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि स्वराज केवल संविधान की किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं है। स्वराज एक जीवन पद्धति है। यह तब जन्म लेती है जब हम शिकायत छोड़कर सहभागिता अपनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम अधिकारों के साथ कर्तव्य को महत्व देते हैं, जब हम अपने गाँव, अपने मोहल्ले और अपने देश को अपना घर समझकर उसकी देखभाल करते हैं। याद रखिए श्रोताओं कि देश की तस्वीर संसद से नहीं समाज से बदलती है।
1: बिल्कुल,
0: समाज की तस्वीर गांव से बदलती है और गांव की तस्वीर हर नागरिक की सोच से बदलती है। यदि हर व्यक्ति यह ठान ले कि वह अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएगा, पानी बचाएगा, पेड़ लगाएगा और समाज के कार्यों में अपनी भागीदारी देगा तो स्वराज की राह अपने आप आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कहा गया है कि स्वच्छता से विचार जागेंगे, जिम्मेदारी से स्वराज बनेगा और कर्तव्य से दीप जलाए जाएंगे और अपना देश आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, स्वच्छता से स्वराज तक के सफर को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्र
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, हितर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। हाजिर हो गई हूं साथियों आज भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान में बातचीत करने वाले हैं कि क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं। श्रोता साथियों, सुबह होते ही दिन गुजरता है, शाम ढल जाती है, फिर एक नई सुबह आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर दिन को जी रहे हैं या बस कैलेंडर के पन्ने पलटते जा रहे हैं। यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है कि क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ हम दिन काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो शायद यह सवाल हमारे भीतर बहुत कुछ जगा सकता है। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे इस विषय से जुड़ी ढेर सारी बातों को। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि हमने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू करा ही दिया था कि आज हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं। तो श्रोता साथियों, हर इंसान सुबह उठता है, अपने काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और दिन पूरा करता है, लेकिन क्या केवल सांस लेना, काम करना और समय बिताना ही जीवन है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। जीवन जीना और जीवन को केवल बिताना दोनों अलग अलग बातें हैं। जी हाँ साथियों, जब इंसान हर दिन में कुछ महसूस करता है, कुछ सीखता है, किसी की मदद करता है, किसी खुशी को जीता है और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाता है, तब वह जीवन जीता होता है। लेकिन जब वही इंसान केवल इस इंतजार में रहता है कि किसी तरह दिन निकल जाए, तब वह शायद जीवन नहीं जी रहा, केवल दिन काट रहा होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन की लंबाई नहीं, उसे जीने का तरीका मायने रखता है। जी हाँ श्रोता साथियों, अक्सर ऐसा धीरे धीरे होता है। जिम्मेदारियां बढ़ती है, काम बढ़ता है, हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, जब इंसान जीवन को महसूस करना ही भूल जाता है। वह केवल रोजमर्रा के कामों की सूची पूरी करने में लग जाता है। सुबह उठो, काम करो, थको और सो जाओ, फिर वही क्रम अगले दिन। धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है, अनुभव नहीं। और इससे जब सपने पीछे छूट जाते हैं, तब व्यक्ति मन ही मन ये सोचता है कि मैं अपने जीवन में आखिरकार कर क्या रहा हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी कोई सपना तो होता ही है। किसी को कुछ नया सीखना होता है, तो किसी को किसी कला को आगे बढ़ाना होता है, तो किसी को समाज के लिए कुछ करना होता है। लेकिन श्रोता साथियों, कई लोग धीरे धीरे अपने सपनों को किनारे रख देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी समय नहीं हुआ, बाद में करेंगे। अब उम्र निकल गई और इसी तरह साल बीत जाते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार जिंदगी इसलिए नहीं रुकती कि रास्ते बंद हैं, बल्कि इसलिए रुक जाती है दोस्तों, क्योंकि हमने चलना बंद कर दिया होता है। इसलिए खुशियों को टालने की आदत हमें नहीं रखनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पैसा ज्यादा होगा तब खुश रहेंगे, जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब खुश रहेंगे,

जब सब कुछ सही होगा तब जीना शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन इंतजार नहीं करता। यदि हम हर खुशी को भविष्य के लिए टालते रहेंगे तो दोस्तों वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाएगा। जीवन का आनंद केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। कहते हैं ना कि एक कप चाय के साथ बिताया गया सुकून भरा पल, परिवार के साथ की गई हंसी मजाक की बातें, किसी की मदद करने की खुशी, यही जीवन के असली खजाने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि हम हमारा जीवन जी रहे हैं या बस दिन ही काट रहे हैं, तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। और जैसा कि बातें गीत से पहले बहुत अच्छी चल रही थी, अब यही बात आती है कि क्या व्यस्त तो होना ही जीना है। आजकल बहुत से लोग व्यस्त हैं, लेकिन एक सवाल पूछिए कि क्या व्यस्त तो होना और जीवन जीना एक ही बात है? जरूरी नहीं है दोस्तों। कई लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि काम करना जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जीवन में रिश्ते भी जरूरी हैं, स्वास्थ्य भी जरूरी है, खुशी भी जरूरी है और साथ ही साथ आत्मिक संतोष भी जरूरी है। इसलिए वर्तमान को हमें खोना नहीं है, उसे बनाए रखना है। कुछ लोग अतीत में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। अतीत बदल नहीं सकता दोस्तों, लेकिन भविष्य अभी आया नहीं है। लेकिन वर्तमान ही वह समय है जिसमें जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। यदि हम वर्तमान को ही नहीं जी पाए तो जीवन कब जिएंगे? इसलिए दोस्तों, जो पल अभी आपके पास है वही जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। हमें हमारे बच्चों को भी ये सिखाना है कि वे छोटी छोटी बातों में खुश रहिए। श्रोता साथियों, आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसमें हम बच्चों से कुछ सीख सकते हैं। हमें बच्चों को देखना है कि वो किस तरीके से छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। वे वर्तमान में ही जीते हैं, उन्हें कल की चिंता नहीं होती, उन्हें हर दिन कुछ नया नहीं दिखाई देता। शायद इसी कारण उनका जीवन हल्का और आनंदपूर्ण होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई बार जीना भूल जाते हैं। कई बुजुर्ग जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बात कहते हैं साथियों, कि काश हमने जीवन को थोड़ा और खुलकर जिया होता। अक्सर लोगों को अपनी गलतियों का पछतावा कम होता है, लेकिन उन अवसरों का पछतावा ज्यादा होता है जिन्हें उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम केवल भविष्य की तैयारी न करें, बल्कि वर्तमान को महत्व दें और वर्तमान में जिएं। क्योंकि सच्चा जीवन दोस्तों वह नहीं है जिसमें कोई समस्या न हो। सच्चा जीवन वह है जिसमें संघर्ष हो लेकिन उम्मीद भी हो, जिम्मेदारियां हो लेकिन मुस्कान भी बनी रहे, काम हो लेकिन अपने लोगों के लिए समय भी हो, सपने हो और उन्हें पूरा करने का साहस भी हो। जीवन को जीना कैसे शुरू हम कर सकते हैं? तो हमें हर दिन किसी एक बात के लिए आभार व्यक्त करना है, अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताना है, अपने सपनों को पूरी तरह नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना है, अपनी तुलना दूसरों से कम करनी है और अपने लिए थोड़ा समय निकालना है। क्योंकि दोस्तों, जीवन केवल वर्षों का नाम नहीं है बल्कि उन अनुभवों का नाम है जिन्हें हम महसूस करते हैं। यदि हम केवल जिम्मेदारियों, चिंताओं और भागदौड़ में उलझे रहेंगे ना, तो शायद समय बीत जाएगा लेकिन जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मैं सचमुच जी रहा हूँ? क्या मैं अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपनी खुशियों को समय दे रहा हूँ? क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल दिन पूरे करना नहीं होता है, बल्कि हर दिन में जीवन को महसूस करना है। कहते हैं ना साथियों, जिंदगी हमें केवल उम्र बढ़ाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि हर दिन को अर्थ देने के लिए मिली है। दिन तो अपने आप गुजर जाएंगे, लेकिन यादें, खुशियां और अनुभव हमें खुद बनाने होंगे। इसलिए केवल समय मत बिताइए, समय के साथ जीवन जिए। इसी के साथ दोस्तों कहना चाहूंगी कि क्या हम जी रहे हैं या समय काट रहे हैं, ये केवल एक विषय नहीं है बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। यह हमें अपने जीवन की गति को थोड़ी देर के लिए रोककर उसकी दिशा देखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि जिस मंजिल पर हम दौड़ रहे हैं क्या वह वास्तव में हमारी अपनी मंजिल है या नहीं। जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों, पदों या संपत्ति से नहीं आंका जा सकता। जीवन का वास्तविक अर्थ श्रोता साथियों उन अनुभवों में छिपा होता है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाते हैं, वह संतोष जो किसी की मदद करने से मिलता है, वह खुशी जो परिवार के साथ बिताए गए समय से मिलती है, और वह आत्मविश्वास जो अपने प्रयासों से पैदा होता है, और वह शांति जो अपने मन के साथ ईमानदार रहने से मिलती है। यही जीवन की वास्तविक पूंजी है। यदि हर दिन केवल एक बोझ की तरह लगने लगे दोस्तों, यदि हर सुबह केवल जिम्मेदारियों की सूची बनकर रह जाए, यदि हर शाम यह महसूस हो कि आज भी हमने सिर्फ समय बिताया, तो शायद हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। क्योंकि जीवन केवल भविष्य की तैयारी का नाम नहीं
यदि हम हमेशा आने वाले कल के लिए जीते रहेंगे तो आज हमारे हाथ से निकल जाएगा और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने वर्षों तो बिताए लेकिन उन्हें पूरी तरह नहीं जिया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में ऐसे क्षणों के लिए जगह बनाएं जो हमें जीवंत महसूस कराए, अपने भीतर के उत्साह को बनाए रखें, नई चीजें सीखने की जिज्ञासा को जीवित रखें, हर उम्र में सपने देखने का साहस बनाए रखें। जीवन तब खूबसूरत बनता है दोस्तों जब हम केवल अस्तित्व नहीं अनुभव चुनते हैं, केवल गुजरते समय को नहीं बल्कि उसके अर्थ को पहचानते हैं। क्योंकि जीवन कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसे बस पार कर लेना हो, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसे महसूस करना, समझना और संजोना होता है। सिर्फ जीवित रहना और सचमुच जीना, इन दोनों के बीच का अंतर ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आशा करती हूँ कि आज जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुंद आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुंद आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय रहने वाला है कि गलती स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं होती है बल्कि परिपक्वता की निशानी होती है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, मनुष्य जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। कोई भी इतना व्यक्ति जो होता है वो परिपूर्ण नहीं होता है, उससे कभी न कभी कोई भूल हो ही जाती है। विद्यार्थी पढ़ाई में, किसान खेती में, कर्मचारी अपने कार्यों में, गृहिणी घर के कार्यों में कभी न कभी गलती कर ही बैठती है। लेकिन किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उसकी गलती से नहीं बल्कि उस गलती के प्रति उसके व्यवहार से पहचाना जाता है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति मनीषा अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो परिपक्व, जिम्मेदार और ईमानदार माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कहा जाता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है बल्कि परिपक्वता की निशानी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी जी।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि श्रोता साथियों परिपक्वता की निशानी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति इतना पूर्ण नहीं होता कि उससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो।
1: जी जी।
0: जीवन की यात्रा में हम सभी कभी न कभी गलत निर्णय लेते हैं साथियों, गलत शब्द बोल देते हैं या किसी परिस्थिति में ठीक निर्णय नहीं ले पाते।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसकी गलती से नहीं बल्कि उस गलती के प्रति उसके व्यवहार से होती है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर सुधारने का साहस रखता है अंजलि जी, वही वास्तव में अपने जीवन में परिपक्व होता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि गलती स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य गलती करने के बाद ये सोच लेते हैं कि अगर हमने हमारी गलती सभी के सामने स्वीकार करी तो अगला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारा मजाक उड़ जाएगा, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो श्रोता साथियों, इन सबसे परे एक सत्य ये है कि हम अगर हमारी गलती को स्वीकार करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारा मजाक अवश्य उड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए एक चीज बैठ जाएगी कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, इससे इतनी बड़ी गलती करी फिर भी इसने इसको स्वीकार कर लिया।
0: बिल्कुल।
1: गलती छोटी हो या बड़ी, हमारे लिए स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और जब हम गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो हम एक अलग ही पहचान, एक अलग ही व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के सामने हमारा छोड़ देते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में लोग अपनी छवि बचाने के लिए अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, उन्हें लगता है कि गलती मान लेने से लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: गलती स्वीकार करना आत्मविश्वास, ईमानदारी और मानसिक परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सामुदायिक जीवन, परिवार, कार्यस्थलों और समाज, हर क्षेत्र में श्रोता साथियों, हर जगह ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और आगे बढ़ने का साहस रखे।
1: जी हाँ मनीषा, गलती स्वीकार करना आत्म सुधार का पहला कदम है। जब व्यक्ति श्रोता साथियों अपनी भूल को नहीं मानेगा तब वह उससे भी सीख नहीं पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: अपनी गलती को स्वीकार करने से व्यक्ति को ये समझने का अवसर मिलता है कि उससे कहाँ चूक हो गई है और भविष्य में उसे कैसे सुधारा जा सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: कई लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए गलती छिपाने का प्रयास करते हैं, वे बहाने बनाते हैं और दूसरों पर दोष डाल देते हैं। इससे श्रोता साथियों समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है।
0: जी हाँ।
1: इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वह विश्वास और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों, अधिकांश लोगों को अपनी गलती स्वीकार करने में अहंकार और बाधा भी लगती है।
0: बिल्कुल।
1: लगता है कि यदि उन्होंने अपनी गलती मान ली तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। कुछ लोगों को आलोचना का डर होता है जबकि कुछ अपनी छवि खराब होने से घबराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है श्रोता साथियों कि गलती छिपाने से व्यक्ति मजबूत नहीं बनता, वास्तविक साहस अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने में होता है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति कमियों का सामना कर सकता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि गलती करना मानव जीवन का स्वभाव है। श्रोता साथियों, कहा जाता है कि गलती इंसान से ही होती है।
1: बिल्कुल।
0: यह कहावत श्रोता साथियों में याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति त्रुटिपूर्ण नहीं होता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में रहता है।
1: बिल्कुल।
0: जो सीखता है वह कभी न कभी गलतियां भी करता है। यदि श्रोता साथियों, कोई विद्यार्थी पढ़ाई करते समय गलती नहीं करेगा तो वह सही उत्तर का पता कैसे लगा पाएगा?
1: बिल्कुल।
0: यदि किसान खेती करते समय नए प्रयोग नहीं करेगा तो वो बेहतर उत्पादन कैसे सीखेगा? यदि वैज्ञानिक प्रयोग करते समय असफलताओं से डरेगा तो वह नए आविष्कार कैसे करना सीखेगा? इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि गलती जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने का आरंभ होती है।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय तो ले लेता है, साथ ही अपनी असफलताओं और गलतियों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है।

0: को सुधारना होगा। हम देखते हैं कि गलती करने से हमें बहुत सारी जीवन की अलग अलग सीख मिलती है। हमें समझ में आता है कि कहाँ किस प्रकार की गलती होती है और कैसे उस गलती में हमें सुधार करने की जरूरत है, और हर गलती एक नया सबक सिखाती है। जैसे कि गलती स्वीकार करने से व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और भविष्य में अधिक समझदारी से निर्णय भी ले पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गलती स्वीकार करना हमें हमेशा कठिन लगता है, तो श्रोता साथियों, ये हमें कठिन क्यों लगता है? बहुत से लोग अपनी गलती को जानते हुए भी अंजलि जी हम देखते हैं कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। इसके पीछे श्रोता साथियों कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अहंकार, लोगों की अपेक्षाओं का डर, सम्मान खोने की चिंता, संयम और सहयोग का सही सामना नहीं कर पाना, साथ ही आत्मविश्वास की कमी। अंजलि जी, जब व्यक्ति अपने अहंकार को अपने विवेक से बड़ा मान लेता है, तब भी वह गलती करने के बजाय उसे सुधार करने के बजाय गलतियां करता रहता है। ये भी सबसे बड़ी समस्या है जो समस्याओं को बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पा रहे हैं कि गलती स्वीकार करना क्यों जरूरी है और किस तरीके से गलती कर हम जीवन की महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि गलती स्वीकार करने के क्या लाभ होते हैं, जिसमें हमने जाना था कि आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने के अवसर मिलते हैं, यही श्रोता साथियों रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। परिवार, मित्रता, कार्यस्थल के संबंध जो होते हैं मनीषा, वो विश्वास पर ही टिके होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है तो दूसरों का उस पर भरोसा बढ़ता है। गलती छिपाने से मन में डर और तनाव बना रहता है, जबकि गलती स्वीकार करने से मन हल्का रहता है और व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करता है। गलती स्वीकार करने की आदत श्रोता साथियों व्यक्ति को विनम्र, जिम्मेदार और समझदार बनाती है।
1: जी हाँ,
0: उससे उसका व्यक्तित्व निखरता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यदि परिवार के सदस्य अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाए तो घर में विवाद कम होंगे, आपसी प्रेम बढ़ेगा। उसी प्रकार समाज में भी जिम्मेदार और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: जब लोग गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो समाज में विश्वास, सहयोग और पारदर्शिता का वातावरण बना रहता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर श्रोता साथियों को बताएं कि गलती स्वीकार करना परिपक्वता की पहचान क्यों है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि परिपक्व व्यक्ति वही होता है साथियों जो अपनी कमियों को पहचान सके। वह यह समझता है कि गलती मान लेने से उसका सम्मान कम नहीं होगा,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि लोग उस पर अधिक विश्वास करेंगी। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति ईमानदार होता है साथियों, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना जानता है, साथ ही वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरों का विश्वास जीत लेता है, भविष्य में वही गलती दोहराने से बचता है। ऐसे श्रोता साथियों व्यक्ति जो होते हैं वो अपने व्यक्तित्व को समय के साथ निखार पाते हैं और अपने जीवन को अधिक प्रभावी बनाते हैं।
0: जी हाँ मनीषा, गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन गलती स्वीकार करना उसके चरित्र की महानता को दर्शाता है।
1: जी हाँ।
0: अपनी भूलों को मान लेने से श्रोता साथियों व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है।
1: जी हाँ।
0: जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए और न ही उन्हें छिपाने का प्रयास करना चाहिए। हमें साहस पूर्वक उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि वास्तव में गलती स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि परिपक्वता, ईमानदारी और आत्मविकास की सबसे बड़ी निशानी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि आपने बताया कि परिवार विश्वास की नींव पर चलता है, श्रोता साथियों यदि परिवार का कोई भी सदस्य अपनी गलती मान ले तो विवाद जल्दी समाप्त हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच यदि श्रोता साथियों मुझसे गलती हुई है जैसा सरल शब्द कहने की आदत हो तो रिश्तों की कड़वाहटें वो कम हो सकती है और साथ ही श्रोता साथियों अपनापन ही वो बढ़ता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि बच्चे भी वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, अपने माता पिताओं को छोटी छोटी गलतियां करते हुए देखते हैं। अगर घर में माता पिता अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं श्रोता साथियों तो बच्चे भी ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ वही सीखते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, जीवन की यात्रा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी गलती नहीं करता हो। गलतियां हमारे अनुभव का हिस्सा होती हैं और कई बार वही हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देकर जाती हैं।
1: जी हाँ।
0: किसी भी इंसान की महानता इस बात से नहीं मापी जाती श्रोता साथियों कि उसने कितनी कम गलतियां की, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने अपनी गलतियों से क्या सीखा, उन्हें सुधारने के लिए कितना प्रयास किया। अपनी भूल को स्वीकार करना आत्मसम्मान को कम नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति सत्य का सामना करने का साहस रखता है। आज के समय में जब लोग अपनी छवि बचाने के लिए अक्सर जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं,
1: जी हाँ।
0: तब अपनी गलती स्वीकार करना एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत मूल्यवान गुण बन जाता है। यह गुण व्यक्ति को विनम्र बनाता है, उसके विचारों को परिपक्व बनाता है और उसके चरित्र को मजबूत करता है।
1: जी हाँ।
0: जो लोग कमियों को पहचानते हैं वे निरंतर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम बात करें कि कार्यस्थल पर गलती स्वीकार करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि किसी भी कार्यालय, संस्था या संगठन में अगर हम काम करते हैं तो समय रहते हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। श्रोता साथियों यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उस गलती का समाधान वो समय पर निकल सकता है। इसके विपरीत अंजलि जी, अगर हम देखते हैं कि हम अपनी गलती को छिपाएंगे, छोटी छोटी समस्याएं वो श्रोता साथियों बड़ी बनती जाएंगी। एक अच्छा कर्मचारी वही माना जाता है साथियों जो गलती होने पर उसे स्वीकार करे, उसे सीख ले और भविष्य में बेहतर कार्य करने का प्रयास करे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, गलती स्वीकार करने से केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि उसके परिवार, कार्यस्थल और समाज का भी लाभ होता है।
1: जी हाँ।
0: इससे विश्वास बढ़ता है, संबंध मजबूत होते हैं और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं क्योंकि वे यह संदेश देते हैं कि सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को छिपाने में नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके सुधारने में होती है।
1: बिल्कुल।
0: हमें अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए श्रोता साथियों कि यदि कभी हमसे कोई भूल हो जाए तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे और न ही किसी और पर दोष डालेंगे। हम उसे स्वीकार करेंगे, उससे सीखेंगे और स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: हर स्वीकार की गई गलती हमें एक बेहतर इंसान, जिम्मेदार नागरिक और परिपक्व व्यक्ति बनने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है।
1: जी हाँ।
0: यही सोच जीवन को सार्थक बनाती है और हमें सफलता के साथ साथ सम्मान भी दिलाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समाज ही वो विश्वास की सबसे बड़ी पूंजी है। जब कोई व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करता है साथियों, तो लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: नेतृत्व करने वाले लोग, शिक्षक, डॉक्टर, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए श्रोता साथियों यह गुण विशेष रूप से आवश्यक है। उनकी एक गलती को स्वीकार करना कई लोगों के लिए विश्वास और कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है।
0: जी जी बिल्कुल मनीषा, हमारे लिए समझना आवश्यक है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ज्ञान, प्रतिभा या अनुभव ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं का सही मूल्यांकन करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: जी हाँ।
0: अपनी गलती स्वीकार करना आत्म जागरूकता का प्रतीक है। श्रोता साथियों, यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर सत्य को महत्व देता है।
1: जी हाँ।
0: जो लोग अपनी भूलों को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, वे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने और बेहतर बनाने की क्षमता भी रख पाते है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर हम बात करिए गलती छुपाने के दुष्परिणामों की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है जो अपनी गलतियों को छुपाता है तो वह अक्सर नई नई झूठी झूठी बातों को बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: जिससे हम देखते हैं कि मानसिक तनाव है वो बढ़ता जाता है, लोगों का विश्वास है वो टूट जाता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, समस्याएं हैं वो छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बनने लगती हैं, आत्मग्लानी पैदा हो जाती है। तो श्रोता साथियों, एक छोटी सी गलती छिपाने के लिए कई बार व्यक्ति अनेक गलतियां करता है। तो इसीलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अपनी गलती को हमें कभी छिपाना नहीं है, जो भी गलती है उसे स्वीकार करके सामने वाले को बता देना है। क्या पता वही गलती हमारे लिए आगे जाकर बड़ी मुसीबत बन जाए। तो श्रोता साथियों, जो भी गलती हो हमें तुरंत बता देनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि गलती स्वीकार करना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ।
0: ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रही थी कि गलती स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी परिपक्वता की निशानी है।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गलती स्वीकार करना भी एक कला है। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि हम शांत मन से सोचे कि गलती कहाँ हुई है, क्यों हुई है और भविष्य के लिए ये इसे कैसे रोका जा सके, तो श्रोता साथियों, वही गलती हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। जीवन में सफल लोग भी अपनी असफलताओं से भागे नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने का प्रयास किया।
2: बिल्कुल मनीषा, गलती को स्वीकार करना वास्तव में आत्मविकास का द्वार खोलता है। यह हमें सिखाता है कि असफलताएं और भूले जीवन की बाधाएं नहीं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, तभी हम अपनी क्षमताओं को भी सही दिशा दे पाते हैं।
0: जी हाँ।
2: इसके विपरीत, जो व्यक्ति हमेशा स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है, वह सीखने और आगे बढ़ने के अनेक अवसर खो देता है। एक स्वस्थ समाज और मजबूत रिश्तों की नींव ही इसी गुण पर टिकी होती है।
0: जी हाँ।
2: जहाँ लोग अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, वहाँ विश्वास जन्म लेता है, संवाद बेहतर होता है और आपसे सम्मान भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
2: इसलिए श्रोता साथियों, परिवार हो, कार्यस्थल हो या सामाजिक जीवन, हर जगह वही व्यक्ति लंबे समय तक सम्मान प्राप्त करता है जो ईमानदारी और जिम्मेदारी का परिचय देता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें कि श्रोता साथियों, बच्चों में यह आदत हम कैसे विकसित करें। तो श्रोता साथियों, बच्चों को गलती पर केवल डांटना उचित नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें समझाना चाहिए कि गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। यदि बच्चा अपनी गलती को स्वीकार करता है, तो वो उसकी ईमानदारी की प्रसन्नता हमें करनी चाहिए।
1: जी।
0: और श्रोता साथियों, उसे सही मार्ग दिखाना हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएंगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
2: बिल्कुल मनीषा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे कि एक गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते थे।
0: जी हाँ।
2: धीरे धीरे मनीषा, उसे अपनी समझ पर बहुत घमंड होने लगा। उसे लगने लगा कि वह कभी भी गलती नहीं कर सकता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। आरव और उसका मित्र दीपक मिलकर एक मॉडल बना रहे थे।
0: बिल्कुल।
2: दीपक ने एक नई योजना सुझाई, लेकिन आरव ने उसकी बात सुने बिना ही उसे गलत बता दिया। तुझे कुछ नहीं पता, मेरी बात मानो, आरव ने कहा। दीपक चुप हो गया। दोनों ने आरव के बताए अनुसार मॉडल तैयार कर दिया, लेकिन प्रदर्शनी वाले दिन मॉडल ठीक से काम ही नहीं कर पाया। शिक्षक ने कारण पूछा तो आरव ने तुरंत कहा, सर शायद दीपक ने कोई गलती कर दी होगी। दीपक को बहुत बुरा लगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। अगले दिन विज्ञान शिक्षक ने दोनों को बुलाया। उन्होंने पूरी तैयारी की प्रक्रिया समझी और पाया कि गलती वास्तव में आरव के निर्णय में थी।
0: जी हाँ।
2: शिक्षक ने शांत स्वर में कहा, आरव, गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती किसी और पर डाल देना बहुत बड़ी गलती है। आरव को अपनी भूल का एहसास हुआ। पहली बार उसे लगा कि उसके अहंकार ने उसके मित्र का दिल दुखाया है। वह उसी शाम दीपक के घर गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, दीपक मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने बहुत बार तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया और मेरा दोष भी मैंने तुम पर दे दिया। दीपक मुस्कुराया और बोला कि दोस्ती में माफी से बड़ी कोई बात नहीं होती। कुछ महीनों बाद फिर एक प्रतियोगिता हुई। इस बार आरव ने दीपक की राय ध्यान से सुनी। दोनों ने मिलकर काम किया और प्रथम पुरस्कार जीता।
0: जी हाँ।
2: पुरस्कार मिलने पर शिक्षक ने

0: कहा कि इस जीत का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मॉडल नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में आया बदलाव है। हारस समझ चुका था कि गलती स्वीकार करने से कि इंसान छोटा नहीं बल्कि वही इंसान बेहतर बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, गलती स्वीकार करना हार नहीं है, अपनी भूल मान लेना ही सच्ची बहादुरी होती है, ईमानदारी और परिपक्वता की पहचान होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पेड़ आंधी में इसलिए श्रोता साथियों बच जाता है क्योंकि वह समय आने पर थोड़ा झुकना जानता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी महान तभी मान बनता है जब वह अपनी गलती को स्वीकार कर स्वयं को सुधारने के लिए तैयार रहता है। झुकना श्रोता साथियों कमजोरी नहीं बल्कि परिस्थिति को समझने की सबसे बड़ी बुद्धि है।
0: बिल्कुल।
1: गलती स्वीकार करना हार मानना नहीं होता है श्रोता साथियों बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि चरित्र, ईमानदारी और परिपक्वता की सोच का परिचायक होता है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं अंजलि जी, हम देखते हैं कि वे जीवन में अधिक सफल, सम्मानित और आत्मविश्वासी बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा श्रोता साथियों ये याद रखना चाहिए कि गलती करना हमारा स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना, उसे सुधार करना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी और परिपक्वता की पहचान है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि श्रोता साथियों परिपक्वता की निशानी है। साथियों, हम कहना चाहेंगे कि आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है वो गलती को स्वीकार करना है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे श्रोता साथियों वही बढ़ पाता है जो अपनी कमियों को पहचानता है। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें सुधारने का अवसर भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए गलती स्वीकार करना आत्मविश्वास की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है श्रोता साथियों, वही अपने व्यक्तित्व को निखार पाता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गलती मान लेने से उसका आत्मविश्वास है वो कम हो जाएगा, जबकि श्रोता साथियों वास्तविकता यह है कि आत्मविश्वास ही व्यक्ति है वो अपनी गलतियों को भूल मानकर स्वीकार कर लेता है। जिसे स्वयं पर भरोसा होता है, अंजलि जी, वो जानता है कि गलती उसके पूरे व्यक्तित्व को कमजोर बना सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए वह बिना डरे अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है।
1: जी हाँ मनीषा, जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। कभी अहंकार रास्ता रोकता है तो कभी आलोचना का डर और कभी सम्मान खोने की चिंता। लेकिन जो लोग इन डर से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं वे समय के साथ अधिक मजबूत, विश्वसनीय और सम्मानित बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में बनती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वे सच से भागते नहीं है बल्कि उसका सम्मान करते हैं। यह भी याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि गलती स्वीकार करना केवल शब्दों में मुझसे गलती हुई कह देने तक सीमित नहीं है।
0: जी हाँ,
1: इसका वास्तविक अर्थ अपनी मूल को समझना, अपनी भूल को समझना और उसके प्रभाव को पहचानना और उसे सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना जरूरी होता है।
0: जी हाँ,
1: प्रक्रिया व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाती है और उसके चरित्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो लोग अपनी पिछली गलतियों का श्रोता साथियों विश्लेषण करते हैं वे भविष्य में अधिक सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। हर गलती श्रोता साथियों हमारे लिए एक अनुभव होती है और यही अनुभव हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की सहायता करता है। इस प्रकार श्रोता साथियों गलती करना व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को भी परिपक्व करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो उसकी बातचीत की कटुता होती है वो भी कम होने लगती है। सामने वाले के मन में उसका सम्मान और विश्वास है वो बढ़ने लगता है। कई बार श्रोता साथियों केवल मुझसे गलती हो गई है जिसे शब्द वर्षों पुराने विवाद को भी समाप्त कर सकते हैं। अच्छे संवाद की शुरुआत ईमानदारी से होती है और ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है श्रोता साथियों अपनी गलती को स्वीकार करना।
1: बिल्कुल मनीषा, एक बेहतर परिवार, बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की शुरुआत भी ऐसे ही लोगों से होती है जो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते। इसलिए हमें अपने जीवन में यह आदत विकसित करनी चाहिए कि जब भी हमसे कोई भूल हो हम उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति केवल अपनी त्रुटि नहीं सुधारता बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए यही परिपक्वता, यही सच्ची ताकत और यही जीवन की वास्तविक सफलता है।
0: जी हाँ,
1: कहते हैं श्रोता साथियों कि गलती करना मानव स्वभाव है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, पर जो अपनी भूल को मान ले उससे बड़ी कोई सौगात नहीं।
0: जी हाँ,
1: खाकर जो संभल जाए वही जीवन का ज्ञान पाता है, जो अपनी कमियां पहचान सके वही आगे बढ़ जाता है। अहंकार की ऊंची दीवारें सच का रास्ता रोकती हैं, लेकिन विनम्रता की छोटी सी लो अंधियारे मन को रोशन करती हैं। गलती छिपाने से बढ़ती है, मन में चिंता और भय की रेखा स्वस्थ स्वीकार करने से नहीं मिलती है आत्मविश्वास की रेखा। जो अपनी भूल को मान सके वह कमजोर नहीं कहलाता है, सच्चाई का दामन थामे जो वह सबका सम्मान पाता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों जीवन सीखों की पाठशाला है, हर अनुभव एक कहानी है, गलती से जो सबक मिले वही सबसे बड़ी निशानी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
2: नमस्कार।
0: साथी श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

के निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक और संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी जी चौहान और उत्कर्ष जी चौहान डुग्गू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सोनू कुंभार, अर्जुना कुंभार। पुनावले से जुड़ना चाह रहे हैं अजीत सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और साईशा जी सोनवनी। इस गीत के अनुरोध करता है कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावले पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और विशाखा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, प्रियंका थांदी, बांबी वाणिमिका और वाणिजी थांदी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। फिल्म का नाम है आशिकी और इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी और कुमार सोनू जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, अभी हमने कुमार सोनू और अनुराधा जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राजगढ़ मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है यादों की बरसात। गीत के बोल ही चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत को आवाज़ दी है आशा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी टांगी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। इस गीत की अनुरोध करता है हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जंतीर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और कमरजीत सिंह। इसी बीच जुड़ना चाह रहे अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणी प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समरराज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, अंजलि वर्मा, श्वेता जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान और सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही चुरा लिया है तुमने जो दिल को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोहका भिलाई से, फिल्म का नाम है डबल क्रॉस। गीत के बोल हैं, मैंने तुमको चाहा है पहली बार। इस गीत को आवाज़ दी है

जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सलारपल गांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। मजनू का टीला से जुड़ रही कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ना चाह रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। डुमराव से जुड़ना चाह रही हैं वलीउल्ला अंसारी, उस्मान नाज परवीन, नरसिंह परवीन, आसमा जी और बेबी अनुश्री जी। इस गीत की अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद जी वर्मा, मुरली अमित जी वर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैंने तुमको चाहा पहली बार। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कल्याण मुंबई से। फिल्म का नाम है जानवर, गीत के बोल हैं, मौसम की तरह तुम भी बदलता न जाओगे। इस गीत की फरमाइश करते हैं किशोर हीरावली, सुजाता हीरावली।

और प्रतीक जी हीरावली। इसी बीच जुन्नाचारी ही कुरावली से शाहिद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरीन अंसारी, आस्था अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है बुलडाणा से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल जी निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं सोपान नारायण इगले और आशीष महिकर जी। इसी बीच जुन्नाचार्य जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। डापकी रोड अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरत अबूसम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। कलानौर से जुड़ रही हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक जी शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। गीत के बोल ही पंची सुर में गाते हैं। इस गीत की फरमाइश करते हैं गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे रतलाम MPC जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी जी धाकड़। इस गीत के अनुरोध करता है गजडूडवारा से शमशुल कमर राही, साहिन फातिमा, अजतान खान, फिजात खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुकेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गुजरात से बेगम प्रमिला प्रदीप, बेगम हेमाजी प्रदीप। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र कुमार डोम, सरिता बन्ना, प्रभा बन्ना, डोली जी और अंजलि डोम। लाहौरा बालोद से जुड़ रहे हैं सुनील कुमार, आशा देवी। चंद्रनगर राजनंदा गांव से जुड़ना चाह रहे हैं रविशंकर जयपुरिया, प्रभा फरजू जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही पंची सुर में गाते हैं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे पंची सुर में गाते हैं। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत के बोल ही बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बरका खाना से अवतार ताज, सहन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी सोहिनी और अल्फाब मलिक जी। इस गीत के अनुरोध करता है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मानाज अंसारी, शबनम बानो जी। बक्सर से जुड़ रही राज एडी अंसारी, फातिमा अनास जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रही डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अलीबा जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रही प्रभा राज चमोरिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। इसे भी जुड़ना चाह रही जनकपुर सहारनपुर से जॉन टिकिस्टो, रोजी टिकिस्टो, पॉल टिकिस्टो, विलिस जी टिकिस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। झारखंड से जुड़ रहे मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी और सादिया जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही बेखुदी में सनम जो उठ गए कदम। इस गीत को आवाज दी है लता जी और मोहम्मद रफी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: भाई बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन, हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये हैं, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीवी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना नाना कदम है, ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहने वाली है बिजली के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आधुनिक युग को यदि बिजली का युग कहा जाए तो ये बिल्कुल उचित होगा। आज हम मनुष्यों का जीवन बिजली के बिना अधूरा दिखाई देता है कशिश।
0: जी जी,
1: घर हो, विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, उद्योग, कृषि हो, परिवहन हो, संचार हो, मनोरंजन, हर क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा भूमिका है। बिजली ने हमारे मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और तेज बना दिया है। जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त आवश्यक होता है श्रोता साथियों, उसी प्रकार आधुनिक समाज के लिए बिजली भी उतनी ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बिजली केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि विकास और प्रगति की आधारशिला भी बन चुकी है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो यहाँ पर पहले सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कह सकते हैं कि उसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना लगभग असंभव है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: बातचीत का विषय है बिजली का महत्व। हम देखते हैं कि सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम बिजली का उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: घर की रोशनी, पंखा, कूलर, मोबाइल, चार्जर, इंटरनेट, अस्पताल, कारखाने और कह सकते हैं कि साथ ही साथ संचार व्यवस्था, सब कुछ बिजली पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि बिजली की खोज और उसके उपयोग ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी है। वैज्ञानिकों के अनेक प्रयोगों और खोजों के कारण आज हम बिजली का लाभ उठा रहे हैं। पहले लोग दीपक, लालटेन और मशालों का उपयोग करते थे, लेकिन बिजली के आने से रोशनी की दुनिया बदल गई। धीरे धीरे बिजली का उपयोग केवल प्रकाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मशीनों, उपकरणों और तकनीकी विकास का आधार बन गया।
0: बिल्कुल,
1: आज बिजली उत्पादन के लिए जल, कोयला, गैस, परमाणु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारे विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। इससे मानव जीवन में अभूतपूर्ण परिवर्तन आया है।
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं कि विज्ञान की अद्भुत देन, बिजली से बड़ी जीवन की शान।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बिजली केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि आज के समय में ये विकास, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति की आधारशिला बन चुकी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, विज्ञान और तकनीक के इस युग में बिजली ने मानव जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। इसलिए बिजली के महत्व को समझना और उसका सही उपयोग करना प्रत्येक नागरिक के साथ साथ युवाओं की भी जिम्मेदारी है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि बिजली ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। साथियों, यह वह शक्ति है जो विभिन्न उपकरणों और मशीनों को चलाने का कार्य करती है। बिजली के अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे कि जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जागृति जी, आज दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में बिजली का उपयोग हो रहा है और इसकी जो मांग है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि यदि अचानक बिजली चली जाए तो हमें उसकी वास्तविक आवश्यकता का अनुभव होता है। गर्मी में पंखे बंद हो जाते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता, पानी की मोटर रुक जाती है और कई आवश्यक कार्य बाधित हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे स्पष्ट है कि बिजली हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। आज हम देखते हैं कशिश की हमारे दैनिक जीवन की लगभग हर गतिविधि बिजली पर निर्भर करती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनेक विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, शिक्षा के क्षेत्र में बिजली ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज हम देखते हैं कि विद्यालय, महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं हो गई है, कंप्यूटर हो गए हैं, लैब हो गए हैं, प्रोजेक्टर और इंटरनेट आधारित शिक्षण संभव हुआ है। हमारे जितने विद्यार्थी वो ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और डिजिटल संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं श्रोता साथी, और हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली की उपलब्धता से बच्चों को रात में पढ़ने की सुविधा मिली है।
0: जी हाँ,
1: बिजली के कारण शिक्षा और अधिक प्रभावी और सुलभ भी बनी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि पहले लोग जहां दीपक, लालटेन और मोमबत्ती का उपयोग करते थे उनकी रोशनी सीमित होती थी, लेकिन आज बिजली के बल्ब, एलईडी लाइटों ने रातों को भी दिन जैसा उजाला संभव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: इससे जागृति जी लोगों की कार्य क्षमता तो बढ़ी है, साथ ही जीवन भी बहुत ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिजली का महत्व बहुत अधिक है, जिससे कि युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बिजली का महत्व दोस्तों इसलिए अधिक माना जाता है क्योंकि पढ़ाई में ये सहायता करता है।
1: जी हाँ,
0: जिससे कि रात में अच्छी रोशनी में अध्ययन संभव हो पाता है युवाओं के लिए। कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं बिजली और इंटरनेट पर ही निर्भर रहती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि आज के जो विद्यार्थी हैं वो केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गए हैं, वह इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम कृषि में बिजली का क्या महत्व है उसको लेकर बातचीत करें तो श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है।
0: जी,
1: और खेती के विकास में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेतों की सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कृषि मशीनें, अनाज प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज भी बिजली पर निर्भर है।
0: बिल्कुल,
1: बिजली ने किसानों का श्रम कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है।
0: जी हाँ,
1: जहाँ पहले सिंचाई के लिए अधिक समय और मेहनत लगती थी, वहीं अब बिजली के माध्यम से ये कार्य सरल हो गया है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से बिजली के महत्व को लेकर बात कर रहे हैं और किस प्रकार से बिजली की उपयोगिता अलग अलग क्षेत्रों में महत्व रखती है ये हम जान रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ये आगे और भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: खुदा।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी बिजली के महत्व को लेकर। तो श्रोता साथियों, यहीं हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज का युग सूचना और संचार का युग है। आप सभी भी जानते हैं, हम देखते हैं कशिश की मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और टेलीविजन बिजली के बिना काम नहीं कर सकते। बिजली ने दुनिया को एक छोटे से वैश्विक गांव में बदल दिया है। लोग कुछ ही क्षणों में देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाएं बिजली की उपलब्धता के कारण ही संभव हो पाई है।
2: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कशिश के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचने से विकास की गति तेज हुई है। बिजली के कारण गांव में छोटे उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है तथा लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ रहा है।
2: बिल्कुल, इसी के साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी बिजली की जीवनदायिनी भूमिका रही है। जैसे कि बिजली के बिना ऑपरेशन थिएटर नहीं चल सकते थे, एक्सरे और जो भी मशीनें थी वे कार्य नहीं कर पाती थी। साथ ही जीवन रक्षक उपकरण भी श्रोता साथियों बंद हो सकते थे। लेकिन हम देखे तो आज बिजली ने सब कुछ आसान कर दिया है।
1: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और संचार के सभी आधुनिक साधन बिजली पर ही आधारित हैं।
1: जी हाँ,
2: ऐसे में युवाओं के लिए फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन रोजगार, सोशल मीडिया जैसी सुविधाएं बिजली की वजह से ही संभव हो पाई है। अगर बात करें ग्राम विकास की, तो जब किसी गांव में बिजली पहुंचती है तो वहां विकास की एक नई संभावनाएं जन्म लेती है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में बिजली आने से जागृति जी बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई है, छोटे उद्योग स्थापित हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधरी हैं।
1: बिल्कुल,
2: साथ ही युवाओं के लिए जैसा कि हमने बताया कि रोजगार के भी ढेर सारे अवसर खुले हैं।
1: जी हाँ,
2: इस प्रकार जागृति जी ऐसा कहा जा सकता है कि बिजली गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि बिजली जितनी महत्वपूर्ण है उसकी बचत भी उतनी ही जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आवश्यकताओं के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
2: जी
1: श्रोताओं, यदि हम बिजली का दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। हमें अनावश्यक रूप से जलती लाइटें और पंखे बंद करने होंगे, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना होगा और बिजली बचाने की आदत विकसित करनी होगी।
2: बिल्कुल,
1: छोटी से छोटी सावधानियां बड़ी बचत का कारण बन सकती है।
2: जी हाँ,
1: हम कह सकते हैं कशिश कि आज पूरी दुनिया स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ रही है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन के ऐसे साधन हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।
2: बिल्कुल,
1: भारत भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यदि हम नवीनीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकेंगे।
2: बिल्कुल,
1: ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पैमाना उसकी विद्युत व्यवस्था होती है।
1: बिल्कुल,
2: जहाँ जागृति जी पर्याप्त बिजली होती है वहाँ उद्योग विकसित होते हैं, शिक्षा बेहतर होती है और रोजगार भी बढ़ता है। इसलिए श्रोता साथियों, बिजली केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक शक्ति भी है।
1: बिल्कुल,
2: हम कह सकते हैं कि बिजली आधुनिक जीवन की धड़कन है। ये हमारे घरों को रोशन करती है, शिक्षा को आगे बढ़ाती है, उद्योगों को गति देती है और किसानों की भी सहायता करती है। हम देख सकते हैं कि देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में आज हम जिस सुविधाजनक जीवन का आनंद ले रहे हैं उसमें बिजली का अमूल्य योगदान है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि बिजली आधुनिक जीवन की रीढ़ है। ये केवल रोशनी का साधन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, संचार और विकास की शक्ति है। श्रोताओं, बिजली ने मानव जीवन को नई गति, नई दिशा प्रदान की है। आज का समाज बिजली के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता।
2: बिल्कुल,
1: हमें बिजली के महत्व को समझते हुए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा श्रोता साथियों, और इसकी बचत को अपनी आदत बनाना होगा। साथ ही नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाकर भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना होगा। जब हर घर, हर गांव और हर क्षेत्र तक बिजली का लाभ पहुंचेगा, तभी सच्चे अर्थों में देश का समग्र विकास संभव हो पाएगा।
2: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि बिजली एक अमूल्य संसाधन है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
2: यदि हम आज बिजली बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा का सुरक्षित भविष्य हम सुनिश्चित कर पाएंगे जागृति जी। ऐसे में युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, बिजली केवल तारों में बहने वाली ऊर्जा नहीं है बल्कि विकास, ज्ञान, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की शक्ति है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में हम सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम बिजली का सदुपयोग करेंगे, उसकी बर्बादी को रोकेंगे और ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे।
1: जी हाँ,
2: क्योंकि साथियों, जब बिजली बचेगी तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों बिजली केवल तारों में बहने वाली ऊर्जा नहीं है, बल्कि विकास, शिक्षा, रोजगार और समृद्धि की रोशनी है। जिस घर में बिजली का उजाला होता है वहाँ सपनों को पंख मिलते हैं। इसलिए बिजली का सम्मान करें, इसकी बचत करें और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का संकल्प लें। याद रखिए, बिजली की हर बची हुई इकाई भविष्य की सबसे बड़ी कमाई है।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हुई और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
2: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना अंतिम गीत हमारे साथियों को हम सुनवाएं।
1: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन के साथ में एक नए विषय को लेकर। आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखाएं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बचपन जीवन का वह दौर है जहां आदतें संस्कार और व्यवहार की नींव रखी जाती है। इसी समय जो गुण सिखाए जाते हैं वे जीवन भर व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज के तेज और तुरंत परिणाम चाहने वाले युग में कशिश, बच्चों के लिए धैर्य रखना और अपनी बारी का इंतजार करना एक महत्वपूर्ण कौशल बन गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि विषय से रूबरू आपको गीत से पहले करा ही चुके हैं साथियों, कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना हम कैसे सिखाएं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे किसी भी चीज के लिए तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं, चाहे वह खेल में अपनी बारी हो या खाने की चीज हो। हम देखते हैं कि ऐसे में उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना सिखाना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन कौशल है जो उन्हें अनुशासन, सहनशीलता और सामाजिक व्यवहार सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बात करें कि अपनी बारी का इंतजार करने का क्या महत्व होता है, तो श्रोता साथियों, अपनी बारी का इंतजार करना बच्चों को कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है।
1: जी जी,
0: जैसे कि धैर्य का विकास। हम देखते हैं अंजलि जी कि जब बच्चा इंतजार करना सीखता है तो वह यह समझ जाता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती।
1: बिल्कुल,
0: और यह उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। साथ ही अगर बात करें तो खेल हो या पढ़ाई, हर जगह नियम होते हैं साथियों। ऐसे में अपनी बारी का इंतजार करना बच्चों को नियमों का सम्मान करना भी सिखाता है। अंजलि जी,
1: जी हाँ, यही बात करें कशिश, तो जब बच्चा दूसरों को भी बराबरी का अधिकार देता है तो उसमें सहानुभूति और सम्मान की भावना विकसित होती है। स्कूल, परिवार और समाज में बच्चों को दूसरों के साथ मिलकर रहना होता है।
0: बिल्कुल,
1: इंतजार करना उन्हें बेहतर सामाजिक बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी बारी का इंतजार करने का महत्व इन सारी चीजों में छुपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल,
1: यही अब बात करें कि बच्चों में अधैर्य के क्या कारण होते हैं, तो साथियों, तुरंत संतुष्टि की आदत, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के कारण बच्चों को सब कुछ तुरंत मिल जाता है, इस वजह से वे अधैर्य हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अत्यधिक लाड प्यार, यानी कि जब हर मांग तुरंत पूरी कर दी जाती है तो बच्चा इंतजार करना सीख ही नहीं पाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता को चाहिए कि बच्चों की हर इच्छा को तुरंत पूरी ना करें। उनकी जो इच्छा है वो पूरी करने लायक है या नहीं है, इन सारी चीजों पर ध्यान से बात करें, बच्चों को समझाएं। अगर चीज उनके लायक नहीं है तो हमें बच्चों को नहीं देनी है, इससे बच्चा जो है वो धैर्य की चीजों को सीख पाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि उदाहरण की कमी। यदि कशिश माता पिता स्वयं अधैर्य दिखाते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। इसलिए सबसे पहले धैर्य का गुण जो है वो माता पिता के अंदर भी होना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर इसी के आगे बात करें कि बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखाया जाए, तो देखते हैं कि खुद उदाहरण बनना हमें सीखना होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बच्चे अंजलि जी वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। ऐसे में यदि माता पिता खुद धैर्य रखेंगे और लाइन में खड़े रहते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। साथ ही श्रोता साथियों, आप छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करवा सकते हैं, जैसे कि खेल में बारी बारी से खेलने को आप बच्चों को कहें, खाने की मेज पर सभी के बैठने का इंतजार करवाएं।
1: बिल्कुल,
0: कहानी सुनाते समय बीच में बोलने या फिर टोकने से आप अपने बच्चों को रोकें। इससे अंजलि जी, धीरे धीरे बच्चा ये समझने लगता है कि हर चीज का एक नियत समय होता है और वो चीज उसी समय पर होनी जरूरी होती है।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ अगर बात करें खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि पास द बॉल, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे कुछ खेल होते हैं जो बच्चों को काफी पसंद होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो माता पिता जो हैं वो इन खेलों का सहारा ले सकते हैं अपनी बारी के महत्व के बारे में बच्चों को बताने में। दोस्तों, इन खेलों में बच्चे स्वाभाविक रूप से इंतजार करना सीखते हैं।
1: इसी के साथ कशिश बात आती है स्पष्ट नियम बनाए, यानी कि दोस्तों बच्चों को साफ साफ बताएं कि पहले तुम्हारी बहन की बारी है फिर तुम्हारी आएगी।
0: जी हाँ,
1: नियम जितने स्पष्ट होंगे बच्चे उतना जल्दी उन सारी चीजों को सीख पाएंगे। जब बच्चा कशिश अपनी बारी का इंतजार करता है तो उसकी तारीफ हमें करनी है कि तुमने बहुत अच्छे से इंतजार किया, मुझे तुम पर गर्व है। इससे बच्चा प्रेरित होता है और वही व्यवहार दोहराता रहता है। कहानियों के माध्यम से भी श्रोता साथियों, हम बच्चों को ये सारी चीजें सिखा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि कहानियाँ बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। धैर्य और संयम की कहानी सुनाए, इन सारी चीजों से बच्चे सीख पाएंगे कि धैर्य का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को बताएं कि 5 मिनट बाद तुम्हारी बारी आएगी, इससे वे मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और कम बेचैन होते हैं। कह सकते हैं कशिश के कभी कभी इंतजार करते समय बच्चे गुस्सा करते हैं, ऐसे में उन्हें गहरी लंबी सांस लेना सिखाएं, गिनती करना और ध्यान हटाना भी सिखाएं।
0: बिल्कुल,
1: ताकि बच्चे जो हैं वो अपने जीवन में अपनी बारी का इंतजार करना सीखें, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है उनकी जिंदगी का।
0: जी हाँ अंजलि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारी आगे भी श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोताओं को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि हम अपने बच्चों को अपनी बारी का इंतजार करना कैसे सिखा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: यही बात करें कशिश की, आम गलतियां जो अक्सर हम माता पिता कर देते हैं वो है हर बार तुरंत मांग को पूरी करना।
1: जी हाँ।
0: साथियों, यकीन मानिए इससे आपका बच्चा अधैर्य हो जाता है। डांटना या सजा देना, इससे बच्चा डर सकता है लेकिन सीख नहीं पाता। तुलना करना कि देखो वह बच्चा कितना शांत है, ऐसी बातें बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी है। इसी के साथ शिक्षक और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रोता साथियों, स्कूल में सामूहिक गतिविधियां हमें करानी चाहिए जिससे बच्चे जो है वो इंतजार करना सीखते हैं। खेल प्रतियोगिता, मंच कार्यक्रम अनुशासन को बढ़ाते हैं और समाज में लाइन लगाना और नियमों का पालन करना बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देता है।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं कशिश के आधुनिक समय में कई सारी चुनौतियां हमारे

0: कि धैर्य, अनुशासन और सम्मान जैसे जो गुण होते हैं वे बच्चों में तभी विकसित होते हैं जब बच्चा ये समझता है कि हर चीज का हम कह सकते हैं कि एक समय होता है, हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। इसलिए हमें बच्चों को प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन के साथ ये सिखाना चाहिए अंजलि जी कि इंतजार करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: हम कहते हैं कि जब बच्चा ये सीख जाता है तो वह न केवल एक अच्छा छात्र बनता है बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हमारे लिए यह समझाना बच्चों को और भी जरूरी हो जाता है कि बच्चे अपनी बारी का इंतजार करना सीखें, क्योंकि ये केवल एक व्यवहारिक आदत नहीं है बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास की नींव है। जब बच्चा धीरे रखना सीखता है तो वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और समझदारी से निर्णय लेना भी सीख जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इंतजार करने की आदत बच्चों को यह सिखाती है साथियों कि हर चीज का एक सही समय होता है और हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है। इससे उनके अंदर सम्मान, अनुशासन, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये गुण कशिश उन्हें न केवल एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं बल्कि भविष्य में एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाते हैं। माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चे को डांट फटकार से नहीं बल्कि प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन से यह आदत सिखाएं। छोटे छोटे अभ्यास, अच्छे उदाहरण और सकारात्मक प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चे धीरे धीरे इस गुण को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही अगर बात करें तो देखते हैं कि आज के तेज और तुरंत परिणाम देने वाले युग में यह और भी जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को धैर्य का महत्व समझाएं साथियों।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जो बच्चा इंतजार करना सीख जाता है वही जीवन में बड़ी सफलता और संतुलन हासिल कर पाता है। ऐसे में आप हमेशा ये याद रखिए कि अपनी बारी का इंतजार करना एक साधारण आदत लग सकती है लेकिन ये एक मजबूत और सफल जीवन की पहली सीढ़ी है साथियों।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ दिले जी।
2: चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकना का हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवरा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के किसान भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने नवी नवी वातें हाती। तो आज भी किसान भाई बहन अमारी अब तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे जे किसान भाई बहन है ई बगीचा में स्वस्थ पौधों नो चुनाव हरते करे ने हरते एना ने अलग अलग प्रजातियाना जे पौधा है एना नी बगिया में लगाड़वा जोईए। तो किसान भाई बहनों अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घणा कनी वाते थेंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो किसान भाई बहन आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: किसान भाई बोनू गीत तो आयशु पूरू ने अणगीत बात एक वक्त फिरी आप सबनू घणे मान स्वागत कर अमारे आज ने कार्यक्रम खेती वाड़ी में जेम की किसान भाई बोनू अमे आपने गीत तकी पहले विषय बता दीधु तू के आज आप बात करवा वारा हूँ के आपने अपना बगीचा में स्वस्थ पौधों नू चुनाव हरते करा एने साथे अलग अलग प्रजातियों पौधो लगाड़ी ने अपने हरते अपनी जे आमदनी है एने वधावी शका। तो किसान भाई बोनो अण विषय माते जानकारी आलवा बल्ले आज अपने स्टूडियो में पधारे तो कहे श्रीमान पांचा भाई पटेल साहब। तो सब तक पहले अपने हामरी लड़ानी बात मोरे करा अपनी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वाघ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसा कि आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बगीचों के लिए हम स्वस्थ पौधे का चुनाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम कोई बगीचा बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हमें पौधों का चुनाव करना आना चाहिए। बहुत सी बार हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो गलत पौधे का चुनाव कर लेते हैं तो वहाँ उन्हें वो फायदा नहीं मिल पाता है जो उन्हें असल में मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पौधों का चयन बगीचों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: अब एक तो जो बगीचे के जो पौधे हैं चयन हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: अपनी जलवायु के हिसाब से देखना चाहिए, ये पौधे अपने एरिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अपन को देखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कौन से बाग अच्छी तैयारी होगी, मतलब कौन से पौधे अपने को बहुत अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। अब अपन यहाँ पर ये क्लाइमेट में सेब नहीं होता है और अपन सेब का पौधा चयन करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वातावरण अनुकूल पौधा आपको तैयार होना चाहिए, जैसे अनार है, आम है, पपीता है, करौंदा है, आंवला है, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, अमरूद है, इस प्रकार के पौधे का आप चयन कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: अब रही बात, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे तीन चार प्रकार का मिक्स पौधे की वाड़ी तैयार करनी है या वाटिका तैयार करनी है, तो आपको इस हिसाब से पौधे का देखना
0: चुनाव करना पड़ेगा।
1: चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन रही बात चयन की, तो उसकी जैसे कि आप आम के पौधे देखने जा रहे हैं है ना, नर्सरी के अंदर आप चयन करेंगे
0: जी जी।
1: तो पौधों की ग्रोथ देखनी पड़ती है, कम से कम पौधे की कलम कहाँ पर की है, कलम यदि नीचे की है, बीच में है कि बिल्कुल टोच पर है।
0: जी बिल्कुल।
1: आजकल नर्सरी वाले भी बहुत, जैसे देसी आम बहुत बड़ा हो गया 3-4 फीट का, लेकिन उसने कलम कर दी है बिल्कुल ऊपर आधे फीट पे
0: जी।
1: तो वो ऐसे पौधे फेल होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हमेशा वो अपन को देखना चाहिए, पौधों की साइज तो देखनी है लेकिन उसने कलम जो ग्राफ्ट किया है, कलम की है वो कहाँ पर की है।
0: जी बिल्कुल।
1: यदि नीचे ग्राफ्टिंग है और पौधा 2-3 फीट का हाइट का है तो वो बेस्ट पौधा है।
0: जी हाँ।
1: पौधा में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पौधा स्वस्थ होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बीमारी अपने खेतों में, अपने फलदार जो बगीचा है उसमें नहीं आए। तो ये सब चीजें, जैसे पौधे की आम की बात कर ली, इस हिसाब से जैसे अपन अमरूद के पौधे का चयन करते हैं तो अमरूद के पौधे का ग्राफ्टिंग हो सकता है उसने विनियर ग्राफ्टिंग की, मतलब मैंने आपको पहले बताया गूंटी कलम, जिसके अंदर जड़ों के अंदर ही वो पौधा दिखता है, मतलब उसकी कलम दिखती नहीं है
0: जी जी।
1: तो ये बहुत विश्वास पात्र पौधे नर्सरी से लेना चाहिए कि जिसकी कलम नहीं दिखती है तो वो सही किस्म का पौधा है कि नहीं है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: तो वो पौधा की आपको हाइट देख के, क्योंकि अमरूद का पौधा हमेशा उसकी फास्ट ग्रोथ होती है ना, तो एक तो उसके मतलब बिना रोग वाला रोगहीन पौधा आपको चयन करना है, जिसके अंदर पौधे के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हर प्रकार का पौधा, जो नींबू वर्ग का पौधा अपन देखें तो भी आपको इस प्रकार से आपको बारहमासी जो पौधा है वो आपको देखना चाहिए है ना, तभी आपका जो फलदार पौधा है, फलदार वाड़ी है वो आप सफल कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन ये सब चीज जो अलग अलग पौधे जो अपन देखते हैं, कोई पौधा कोई लगे एक या दो प्रकार के पौधे लगाते हैं
0: जी हाँ।
1: वो घर के लिए काफी अच्छा है, जैसे नारियल का पौधा लगा दिया है ना, लेकिन यदि आप आमदनी की दृष्टि से देखेंगे तो आपको ज्यादा मात्रा में पौधे
0: लगाने
1: होंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई अपन को संतरा करना है ना, या फिर अपन को करौंदा करना है
0: जी हाँ।
1: करौंदा अचार के लिए बहुत उपयोगी है, तो करौंदा खेत के बीच में करने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: करौंदा आपको बाढ़ के सहारे सहारे सहारे यदि करौंदा कर दिया तो आपको दो प्रकार का बेनिफिट हो जाएगा
0: जी हाँ।
1: किसान को कि बीच में भी फलदार पौधे ले सकते हैं और जो बाउंड्री है उसके अंदर जो करौंदे के पौधे लगा दिए तो वहां से भी आप, और क्योंकि वो झाड़ीदार और कांटेदार रहता है
0: जी जी,
1: तो एक तो प्रकार की फेंसिंग भी हो जाएगी और करौंदे के फल भी उसको
0: मिल जाएंगे जी बिल्कुल सर।
1: अब जो अपन खेत के बीच में अपन फलदार पौधे लगाते हैं, लेकिन खेत की बाउंड्री ऊपर यदि पौधे नहीं लगाए, जो पौधे गर्मी ठंडी और हवा से सुरक्षा देते हैं, जैसे बड़े पौधे वानिकी पौधे की अपन बात करते हैं
0: जी बिल्कुल सर,
1: जो वाड़ी के अंदर पौधे लगाए उससे हाइट में बड़े होने चाहिए, जैसे अपन सागवान की बात करते हैं, जैसे अपन जो नीम है, सुबबूल है ना, शीशम है, कचनार है, सिरस है, इस प्रकार के पौधे चारों तरफ बाउंड्री पे लगना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जब आपको 4-5 साल के बाद आपके खेत के अंदर फल आएगा, और एक तरफ जैसे अभी क्लाइमेट चेंज अपन देख रहे हैं कि भी गर्मी के अंदर इतना तूफान आया कि काफी किसानों को आम का नुकसान हो गया, काफी कैरियर नीचे गिर गई। यदि आपके खेत के चारों तरफ इस प्रकार के पौधे हैं बड़े बड़े, तो वो हवा को रोकने का काम करेगा
0: जी हाँ।
1: और जो आपका फल लगा हुआ है वो गिरेगा नहीं
0: जी,
1: हवा उसको टकरा के ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किसान भाई जब कोई फलदार पौधे की वाड़ी तैयार करता है तो चारों तरफ बाउंड्री में भी उसको दूसरे पौधे
0: लगाने,
1: वो पौधे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो उनको पशुओं को चारे के रूप में काम हो सकता है, इमारती लकड़ी के रूप में काम हो सकता है, तो जैसे जामुन है, जामुन का पौधा भी चारों तरफ लग सकता है, तो इस प्रकार का टिमरू है, जामुन है, इस प्रकार का पौधा यदि लगाएंगे तो उसका फल भी खाने में आ जाएगा, उस फल से कुछ आमदनी भी मिल सकती है, और ये जो मैंने बताया हवा और गर्मी के लू से जो पौधे का नुकसान होता है उससे भी बचा जा सकता है
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से बगीचों में वो स्वस्थ पौधे का चुनाव करें और किस तरीके से वो अगर पौधा खरीदने जा रहे हैं तो उन्हें बातों का ध्यान रखना है, यही सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वस्थ पौधों के जो चुनाव हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं उनसे उन्हें क्या लाभ होंगे और साथ ही उनके कौन कौन सी किस्में हैं।
1: बिल्कुल, स्वस्थ पौधे से किसान को बहुत बड़ा लाभ है, एक उसकी ग्रोथ
0: जी जी
1: ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी तो जल्दी उत्पादन आएगा
0: जी हाँ,
1: किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, तो आमदनी ज्यादा आने के लिए स्वस्थ पौधा चयन करना बहुत जरूरी है
0: जी हाँ,
1: तो किसान की खर्च बच जाएगा, किसी भी प्रकार का कीटनाशक की छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, और स्वस्थ पौधा जो होगा वो जैसे कि बताया कि ग्रोथ ज्यादा होगी तो उत्पादन भी उसमें ज्यादा होता है स्वाभाविक है, तो स्वस्थ पौधा किसान के लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन हाँ, उसमें कौन कौन सी किस्म है, उत्पादन कुछ किस्मों के आधार पर भी जाता है
0: जी बिल्कुल।
1: तो किस्म की अपन बात करें तो जैसे अपन आंवला की बात करें, आंवला भी काफी अच्छा फलदार पौधा है
0: जी जी,
1: है ना, तो उसके अंदर भी NA7 आनंद वन कृष्णा कंचन इस प्रकार की वेरायटी आंवले के अंदर आती है, जैसे अमृत जो है, अमृत के लखनऊ 49 है
0: जी जी,
1: इसके बाद इलाहाबादी है, सफेदा है ना, तो ये उत्पादन के लिए काफी अच्छा
0: फायदेमंद,
1: मतलब बहुत बड़ा फल रहता है उसके अंदर, तो ये वेरायटी अच्छी है। लींबू के अंदर देखें अपन, बारहमासी जो लींबू है, कागदी लींबू है, पंत लाइम है, विक्रम है, परमलीन है, इस प्रकार की लींबू में भी अलग अलग प्रकार की वेरायटी है
0: जी बिल्कुल,
1: जो आप खास करके बारहमासी लींबू आप घर में उपयोग कर सकते हैं, वाड़ी में उपयोग कर सकते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: बेर की बात करें, आजकल बेर भी बहुत अच्छा आमदनी देता है, तो गोला, सेब, उमरान, मुड़िया, ये प्रकार की वेरायटी भी बेर में भी है
0: जी हाँ।
1: अनार भी यदि अपन देखें, अनार के लिए भी ये यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, तो एक तो सिंदूरी अनार अच्छा है, मृदुला है, गणेश है, तो ये वेरायटी अनार में भी है। आम की बात करें तो आम के अंदर यहाँ की जलवायु अपन देखें तो आम जो केसर आम अच्छा है वेरायटी में, लंगड़ा है, मलिका है, दशहरी है, ये वेरायटी अपने इस इलाके में काफी
0: ज्यादा प्रचलित है
1: और उसका क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर काफी उसकी ग्रोथ अच्छी है
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये अलग अलग जो फलदार पौधे हैं इसकी अलग अलग किस्म है, और उसके आधार पर किसान वो किस्म का पौधा लाके अपने खेत के अंदर लगा सकता है और अच्छी आमदनी कर सकता है
0: जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर आज अपने कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी बात से अवगत कराया है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन है वो बगीचों के लिए पौधों का चुनाव करें, क्या ऐसी बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को आपका अमूल्य कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जेम की किसान भाई बहनों, अवड़े अपने वैस में पटेल सर जुड़े तक हता ने एने अपना ने घनी असल तरीका तक बताड़ दीदू है कि हर ते अपने स्वस्थ पौधा नो चुनाव करी शक ने अलग अलग प्रजाति ना पौधा ने लगाड़ी ने अपनी जे आजीविका है एने वधावी शक। तो आशा कर रहा हूं कि किसान भाई बहनों आ सब बातें आपने गमी होंगा। ने अभी टाइम भी थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वा नो। तो अपना सूटता पड़ा पर साथ पहले हामरी लायक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

किसान भाई बुनो, अणस की थाते हमें कार्यक्रम खेतीवाड़ी तिगी पड़ा सूटा। आशा कर रहा कि आज के कार्यक्रम में हमारी अब तक की जी भी बातें रही हैं या आपने गमी होगा। तो किसान भाई बुन, आपने अमारो आज नवा कार्यक्रम केव लग्यू एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमारे अणपता मते। हमारू पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वाघ रेडियो 90.8 FM काम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिनकोड नंबर है 327001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी सको अमारे अणा फोन नंबर माते। हमारू फोन नंबर है 9460051234। किसान भाई बहनों फिर मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक नया विषय ने हाते। तारू दी राम राम राम राम।

0: भाइयों बहनों, जी अरे ग्राम सभा में दोनों बोले हैं तो फैसला मजबूत थे है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर दोनों में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा कर रहे हैं, तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
4: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
3: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
4: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
4: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज से सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आप एकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
6: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है और जहाँ स्वास्थ्य होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जहाँ जागृति जी आत्मविश्वास और जिम्मेदारियाँ होती है वहीं सच्चे स्वराज का जन्म होता है। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों से बातचीत करने वाले हैं। हमारे बातचीत का विषय है स्वच्छता से स्वराज तक का सफर को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे स्वच्छता के बारे में। लेकिन क्यों न जागृति जी, कार्यक्रम की शुरुआत में पहले गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि जागृति जी गीत से पहले विषय से अवगत कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है स्वच्छता से स्वराज तक के सफर को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, स्वच्छता और स्वराज ये दोनों शब्द देखने में भले ही अलग अलग लगते हो, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है।
1: जी हाँ,
0: स्वच्छता केवल जागृति जी अपने घर, आंगन, सड़क या गांव को साफ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी का भी परिचय देती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझने, जिम्मेदारी को निभाने और समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाने की जो चीजें हैं उनको लेकर जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए स्वच्छता से स्वराज तक का सफर केवल सफाई का अभियान नहीं, बल्कि जागरूकता, अनुशासन और सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता को स्वतंत्रता जितना ही महत्वपूर्ण माना था। उनका मानना था कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले लोगों की सोच और आदतों में परिवर्तन लाना होगा।
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी स्वयं सफाई कार्यों में भाग लेते थे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते थे। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था श्रोताओं, बल्कि ऐसा समाज बनाना था जहां लोग आत्मनिर्भर, अनुशासित और जिम्मेदार हो।
0: बिल्कुल।
1: आज भी गांधी जी के विचार हमें ये सिखाते हैं कि स्वच्छता और स्वराज एक दूसरे के पूरक है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हमारे देश ने भले ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन सही अर्थों में स्वराज तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और हर समस्या के लिए केवल सरकार को दोष देते हैं, तो जागृति जी यह स्वराज की भावना के विपरीत है। स्वराज का पहला कदम यही है कि हम स्वयं जिम्मेदारी उठाना सीखें। जब व्यक्ति अपने घर की सफाई करता है, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, तब वह सच्चे स्वराज की दिशा में कदम बढ़ाता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि स्वच्छता का संबंध केवल बाहरी वातावरण से नहीं है, आंतरिक सोच से भी है। जिस प्रकार हम अपने घर और आसपास की गंदगी साफ करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन से नकारात्मकता, ईर्ष्या, भेदभाव और स्वार्थ की गंदगी को भी दूर करना है। श्रोताओं, स्वच्छ विचार ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। जब लोगों की सोच सकारात्मक होती है अंजलि, तभी मिलजुल कर समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं, और यही सच्चे स्वराज की पहचान है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा भारत देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट शहर, आधुनिक तकनीक, नई योजनाएं और आर्थिक प्रगति, ये सब हमारे विकास के प्रतीक है। लेकिन श्रोताओं, यदि स्वच्छता की भावना कमजोर होगी तो विकास अधूरा रह जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: किसी भी देश की पहचान अंजलि केवल उसकी ऊंची इमारतों से नहीं है, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आदतों और अनुशासन से होती है। जब लोग सार्वजनिक स्थानों को अपना समझकर उनकी देखभाल करते हैं, तब राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां लोग अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जहां हर कोई बदलाव तो चाहता है, लेकिन खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम स्वराज और स्वच्छता को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो स्वच्छता से स्वराज का सफर युवाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा स्वच्छता को अपनी आदत बना ले अंजलि, पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए, प्लास्टिक का कम उपयोग करे, जल संरक्षण करे और समाज में जागरूकता फैलाए, तो देश में सकारात्मक परिवर्तन की नई लहर पैदा हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की ताकत भी है। उनकी जागरूकता और जिम्मेदारी स्वराज की नींव को मजबूत बना सकती है अंजलि।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अब भी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें चल रही थी स्वच्छता से स्वराज तक के सफर को लेकर, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं हम आपको यही कहना चाहेंगे कि गांव में स्वच्छता का भी बहुत महत्व है। स्वच्छता और स्वराज दोनों का आधार सहभागिता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तब बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है। अंजलि, समाज में सकारात्मक बदलाव केवल कानूनों से नहीं आते श्रोताओं, बल्कि लोगों की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से आते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले ले अंजलि कि वो अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा, तो देश में स्वच्छता की संस्कृति विकसित होगी। यही संस्कृति आगे चलकर जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करेंगी और जिम्मेदार नागरिक ही स्वराज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम इस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी सी कहानी हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे, जो हमें बताती है कि स्वच्छता से शुरू हुआ एक छोटा सा कदम कैसे स्वराज की बड़ी मंजिल तक पहुँच सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि एक सुंदर सा गांव था, चारों ओर खेत, पेड़ पौधे और मेहनती लोग थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि गांव में हर जगह कचरा फैला रहता था, नालियां गंदी थी, तालाब में प्लास्टिक भरा रहता था।
0: बिल्कुल।
1: और लोग अक्सर जागृति जी कहते थे कि सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन जब कोई उन्हें पूछता कि गांव को साफ रखने के लिए आपने क्या किया, तो सभी चुप हो जाते थे। एक दिन गांव के विद्यालय में नए सर आए, उनका नाम था अरुण सर। उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं। एक दिन सर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ स्वराज का मतलब क्या है। तो उन सारे बच्चों में से एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका नाम था रवि। रवि बोला, सर स्वराज अंग्रेजों से मिली आजादी है। तभी एक लड़की जिसका नाम था सीमा, सीमा ने कहा, सर स्वराज का मतलब अपना शासन। तभी सर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या केवल आजादी मिल जाना ही स्वराज है? अगर हम अपने गांव, अपने वातावरण और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान न रखें, तो क्या हम सच में आजाद हैं? श्रोता साथियों, बच्चे एकदम से सोच में पड़ गए।
0: बिल्कुल।
1: फिर अगले दिन रविवार आया, अरुण सर रविवार के दिन विद्यालय पहुंच गए। उनके हाथ में झाड़ू था, कुछ बच्चे भी विद्यालय आए थे। बच्चों ने पूछा, सर आज सफाई करने वाले नहीं आए हैं क्या? तभी सर ने कहा, आज मैं कर्मचारी नहीं हूँ, जिम्मेदार नागरिक बनकर आया हूँ।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, उसके बाद सर की बात सुनकर बच्चे भी उनके साथ जुट गए। सभी ने विद्यालय परिसर की सफाई शुरू कर दी और ये देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे इससे क्या बदल जाएगा? तभी सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह जागृति जी, कुछ दिनों बाद बच्चों ने अपने घर में भी साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया। वे अपने माता पिता से भी कहने लगे कि कचरा सड़क पर नहीं डस्टबिन में डालिए, तालाब में प्लास्टिक मत फेंकिए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी।
0: जी हाँ,
1: अब गांव के लोग

0: समाधान कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि स्वराज का मतलब शासन चलाना नहीं, स्वराज का अर्थ है अपने जीवन और समाज की जिम्मेदारियों को खुद उठाना।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तो हम कह सकते हैं कि जब लोग जिम्मेदार बनते हैं तब लोकतंत्र मजबूत होता है। स्वच्छता हमें अनुशासन सिखाती है और अनुशासन हमें जिम्मेदारी सिखाता है और जिम्मेदारी हमें स्वराज की ओर ले जाता है। इसी प्रकार श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कह सकते हैं कि स्वच्छता से स्वराज तक का सफर केवल रास्तों और भवनों की सफाई का नहीं बल्कि विचारों, आदतों और जिम्मेदारियों के विकास का सफर है। ये यात्रा हमें बताती है अंजलि कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जब व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है। इसीलिए स्वच्छता को केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन का संस्कार बनाना होगा। तो श्रोता साथियों, हमें ये ठान लेना है कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, क्योंकि सच्चा स्वराज किसी सरकार की देन नहीं अंजलि बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों के प्रयासों से निर्मित होता है।
2: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि स्वराज केवल संविधान की किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं है। स्वराज एक जीवन पद्धति है, यह तब जन्म लेती है जब हम शिकायत छोड़कर सहभागिता अपनाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: जब हम अधिकारों के साथ कर्तव्यों को महत्व देते हैं, जब हम अपने गाँव, अपने मोहल्ले और अपने देश को अपना घर समझकर उसकी देखभाल करते हैं। याद रखिए श्रोताओं कि देश की तस्वीर संसद से नहीं समाज से बदलती है।
1: बिल्कुल,
2: समाज की तस्वीर गांव से बदलती है और गांव की तस्वीर हर नागरिक की सोच से बदलती है। यदि हर व्यक्ति यह ठान ले कि वह अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएगा, पानी बचाएगा, पेड़ लगाएगा और समाज के कार्यों में अपनी भागीदारी देगा, तो स्वराज की राह अपने आप आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि कहा गया है कि स्वच्छता से विचार जागेंगे, जिम्मेदारी से स्वराज बनेगा और कर्तव्य से दीप जलाए जाएंगे और अपना देश आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
2: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से स्वच्छता से स्वराज तक के सफर को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्रय
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घुमर हमरा वारी अमर हित्ते बुने ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु
1: राम राम।
0: हवे बोनो आप सब हमले रिया हो अपड़ू सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी नु स्वागत करे हो हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
2: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हो कार्यक्रम घूमर ने एक ना विषय ने हाथे। मनीषा बोन आज आप कार्यक्रम में बोनते की बातचीत नो विषय है की अपनी जो बोने है एना नो सम्मान करवो अपड़ो संस्कार है की अपनी जिम्मेदारी है। अक्सर आपणे सांभळता आवी रह्यो के जे नारीनुं सम्मान थाय है वहाँ सुख शांति ने समृद्धि नुं वास रहे। पण सवाल आ है के हुं आपणी बहनोनुं सम्मान केवल एक अच्छो संस्कार है या पछी आ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कहेवुं चाहूंगा बहन बोनो के सम्मान केवल शब्दों उद्देश्य सीमित नहीं रहेवुं सुहे। आने आपणे आपणी व्यवहार में आपणी सोच में ने आपणे निर्णय में भी दिखावानी जरूरत है।
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિશે માટે આપણે બોને ગતિ ઘણા અક્કાની વાતે રેંગા અબર હમણા આ ગીતની મોરે કરે આપણી વાતે।
2: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હમર તરે જો આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગ રેડિયો 90.8 FM માટે।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। हाजिर हो गई हूं साथियों आज भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान में बातचीत करने वाले हैं कि क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं। श्रोता साथियों, सुबह होते ही दिन गुजरता है, शाम ढल जाती है, फिर एक नई सुबह आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम हर दिन को जी रहे हैं या बस कैलेंडर के पन्ने पलटते जा रहे हैं। यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है कि क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ हम दिन काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो शायद यह सवाल हमारे भीतर बहुत कुछ जगा सकता है। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे इस विषय से जुड़ी ढेर सारी बातों को। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम के पहले इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि हमने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू करा ही दिया था कि आज हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं। तो श्रोता साथियों, हर इंसान सुबह उठता है, अपने काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और दिन पूरा करता है, लेकिन क्या केवल सांस लेना, काम करना और समय बिताना ही जीवन है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। जीवन जीना और जीवन को केवल बिताना दोनों अलग अलग बातें हैं। जी हाँ साथियों, जब इंसान हर दिन में कुछ महसूस करता है, कुछ सीखता है, किसी की मदद करता है, किसी खुशी को जीता है और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाता है, तब वह जीवन जीता होता है। लेकिन जब वही इंसान केवल इस इंतजार में रहता है कि किसी तरह दिन निकल जाए, तब वह शायद जीवन नहीं जी रहा, केवल दिन काट रहा होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन की लंबाई नहीं, उसे जीने का तरीका मायने रखता है। जी हाँ श्रोता साथियों, अक्सर ऐसा धीरे धीरे होता है। जिम्मेदारियां बढ़ती है, काम बढ़ता है, हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, जब इंसान जीवन को महसूस करना ही भूल जाता है। वह केवल रोजमर्रा के कामों की सूची पूरी करने में लग जाता है। सुबह उठो, काम करो, थको और सो जाओ, फिर वही क्रम अगले दिन। धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है, अनुभव नहीं। और इससे जब सपने पीछे छूट जाते हैं, तब व्यक्ति मन ही मन ये सोचता है कि मैं अपने जीवन में आखिरकार कर क्या रहा हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी कोई सपना तो होता ही है। किसी को कुछ नया सीखना होता है, तो किसी को किसी कला को आगे बढ़ाना होता है, तो किसी को समाज के लिए कुछ करना होता है। लेकिन श्रोता साथियों, कई लोग धीरे धीरे अपने सपनों को किनारे रख देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी समय नहीं हुआ, बाद में करेंगे। अब उम्र निकल गई और इसी तरह साल बीत जाते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार जिंदगी इसलिए नहीं रुकती कि रास्ते बंद हैं, बल्कि इसलिए रुक जाती है दोस्तों, क्योंकि हमने चलना बंद कर दिया होता है। इसलिए खुशियों को टालने की आदत हमें नहीं रखनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पैसा ज्यादा होगा तब खुश रहेंगे, जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब खुश रहेंगे, जब सब कुछ सही होगा तब जीना शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन इंतजार नहीं करता। यदि हम हर खुशी को भविष्य के लिए टालते रहेंगे, तो दोस्तों वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाएगा। जीवन का आनंद केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। कहते हैं ना कि एक कप चाय के साथ बिताया गया सुकून भरा पल, परिवार के साथ की गई हंसी मजाक की बातें, किसी की मदद करने की खुशी, यही जीवन के असली खजाने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि हम हमारा जीवन जी रहे हैं या बस दिन ही काट रहे हैं, तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। और जैसा कि बातें गीत से पहले बहुत अच्छी चल रही थी, अब यही बात आती है कि क्या व्यस्त तो होना ही जीना है। आजकल बहुत से लोग व्यस्त हैं, लेकिन एक सवाल पूछिए कि क्या व्यस्त तो होना और जीवन जीना एक ही बात है? जरूरी नहीं है दोस्तों। कई लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि काम करना जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जीवन में रिश्ते भी जरूरी हैं, स्वास्थ्य भी जरूरी है, खुशी भी जरूरी है और साथ ही साथ आत्मिक संतोष भी जरूरी है। इसलिए वर्तमान को हमें खोना नहीं है, उसे बनाए रखना है। कुछ लोग अतीत में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। अतीत बदल नहीं सकता दोस्तों, लेकिन भविष्य अभी आया नहीं है। लेकिन वर्तमान ही वह समय है जिसमें जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। यदि हम वर्तमान को ही नहीं जी पाए तो जीवन कब जिएंगे? इसलिए दोस्तों, जो पल अभी आपके पास है वही जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। हमें हमारे बच्चों को भी ये सिखाना है कि वे छोटी छोटी बातों में खुश रहिए। श्रोता साथियों, आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसमें हम बच्चों से कुछ सीख सकते हैं। हमें बच्चों को देखना है कि वो किस तरीके से छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। वे वर्तमान में ही जीते हैं, उन्हें कल की चिंता नहीं होती, उन्हें हर दिन कुछ नया नहीं दिखाई देता। शायद इसी कारण उनका जीवन हल्का और आनंदपूर्ण होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कई बार जीना भूल जाते हैं। कई बुजुर्ग जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बात कहते हैं साथियों, कि काश हमने जीवन को थोड़ा और खुलकर जिया होता। अक्सर लोगों को अपनी गलतियों का पछतावा कम होता है, लेकिन उन अवसरों का पछतावा ज्यादा होता है जिन्हें उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम केवल भविष्य की तैयारी न करें, बल्कि वर्तमान को महत्व दें और वर्तमान में जिएं। क्योंकि सच्चा जीवन दोस्तों वह नहीं है जिसमें कोई समस्या न हो। सच्चा जीवन वह है जिसमें संघर्ष हो लेकिन उम्मीद भी हो, जिम्मेदारियां हो लेकिन मुस्कान भी बनी रहे, काम हो लेकिन अपने लोगों के लिए समय भी हो, सपने हो और उन्हें पूरा करने का साहस भी हो। जीवन को जीना कैसे शुरू हम कर सकते हैं? तो हमें हर दिन किसी एक बात के लिए आभार व्यक्त करना है, अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताना है, अपने सपनों को पूरी तरह नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना है, अपनी तुलना दूसरों से कम करनी है और अपने लिए थोड़ा समय निकालना है। क्योंकि दोस्तों, जीवन केवल वर्षों का नाम नहीं है बल्कि उन अनुभवों का नाम है जिन्हें हम महसूस करते हैं। यदि हम केवल जिम्मेदारियों, चिंताओं और भागदौड़ में उलझे रहेंगे ना, तो शायद समय बीत जाएगा लेकिन जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मैं सचमुच जी रहा हूँ? क्या मैं अपने रिश्तों, अपने सपनों और अपनी खुशियों को समय दे रहा हूँ? क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल दिन पूरे करना नहीं होता है, बल्कि हर दिन में जीवन को महसूस करना है। कहते हैं ना साथियों, जिंदगी हमें केवल उम्र बढ़ाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि हर दिन को अर्थ देने के लिए मिली है। दिन तो अपने आप गुजर जाएंगे, लेकिन यादें, खुशियां और अनुभव हमें खुद बनाने होंगे। इसलिए केवल समय मत बिताइए, समय के साथ जीवन जिए। इसी के साथ दोस्तों कहना चाहूंगी कि क्या हम जी रहे हैं या समय काट रहे हैं, ये केवल एक विषय नहीं है बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। यह हमें अपने जीवन की गति को थोड़ी देर के लिए रोक कर उसकी दिशा देखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि जिस मंजिल पर हम दौड़ रहे हैं, क्या वह वास्तव में हमारी अपनी मंजिल है या नहीं। जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों, पदों या संपत्ति से नहीं आंका जा सकता। जीवन का वास्तविक अर्थ श्रोता साथियों उन अनुभवों में छिपा होता है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाते हैं, वह संतोष जो किसी की मदद करने से मिलता है, वह खुशी जो परिवार के साथ बिताए गए समय से मिलती है, और वह आत्मविश्वास जो अपने प्रयासों से पैदा होता है, और वह शांति जो अपने मन के साथ ईमानदार रहने से मिलती है। यही जीवन की वास्तविक पूंजी है। यदि हर दिन केवल एक बोझ की तरह लगने लगे दोस्तों, यदि हर सुबह केवल जिम्मेदारियों की सूची बनकर रह जाए, यदि हर शाम यह महसूस हो कि आज भी हमने सिर्फ समय बिताया, तो शायद हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। क्योंकि जीवन केवल भविष्य की तैयारी का नाम नहीं
यदि हम हमेशा आने वाले कल के लिए जीते रहेंगे तो आज हमारे हाथ से निकल जाएगा और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने वर्षों तो बिताए लेकिन उन्हें पूरी तरह नहीं जिया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में ऐसे क्षणों के लिए जगह बनाएं जो हमें जीवंत महसूस कराएं, अपने भीतर के उत्साह को बनाए रखें, नई चीजें सीखने की जिज्ञासा को जीवित रखें, हर उम्र में सपने देखने का साहस बनाए रखें। जीवन तब खूबसूरत बनता है दोस्तों जब हम केवल अस्तित्व नहीं अनुभव चुनते हैं, केवल गुजरते समय को नहीं बल्कि उसके अर्थ को पहचानते हैं, क्योंकि जीवन कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसे बस पार कर लेना हो।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आशा करती हूँ कि आज जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, वासवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

एक बात मेरे गौर है वो ये कि हंगामा है क्यों बरपा, इसकी ट्रांसलेशन मैं आवाज के और तानों के साथ इसके जमदमों के साथ करूँ।